बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आइए प्रभात की इस बेला में दो कर जोड़ करें प्रार्थना और आरंभ करें भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। ओ मना तेरी बीती जाए उम्र बिना हरि नाम के, अब तो सुमिरन कर ले एक माला हरि नाम की, सीता जी के राम की, राधा के घनश्याम की।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। वाणी, आचरण और व्यवहार से किसी को कष्ट न देना भी ईश्वर की स्तुति है और ऐसी स्तुति हमें नित प्रतिदिन करनी चाहिए।

ये है आपका अपना चंबल चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कई नाम हैं उस ईश्वर के, कई रूप हैं उसके, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, उसका अस्तित्व तो सर्वव्यापी है।

ये था हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के प्रमुख कलाकार थे विक्रम हजारा, नितिन मुकेश, पीयूष कैलाश अनुज, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, कौशिकी देसीकन और साथी। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को यहीं देते हैं विराम।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। प्रमुख कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है पर्यावरण चेतना पर आधारित हमारा कार्यक्रम आबोहवा। आज आप सुनेंगे डॉक्टर मीरा भटनागर की वार्ता, प्रदूषण नियंत्रण में शैवालों का महत्व।
1: प्रदूषण नियंत्रण में शैवालों का महत्व। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों में होने वाला किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जो वातावरण को दूषित करता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन, अवैध खनन, अपशिष्टों का गलत निस्तारण, हानिकारक पदार्थों का उपयोग व पर्यावरणीय नैतिकता के अभाव में आज कई प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु, जल, ध्वनि, मृदा आदि फैल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जा रही हैं, जिसमें पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है। पौधों को हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं, जिनमें से एक है शैवाल वर्ग। शैवाल या एल्गी सरल पौधे हैं, जिनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। अधिकांश शैवाल जलीय होने के कारण यह छोटे तालाबों से लेकर समुद्रों में, नम भूमि, वृक्षों की छाल, नम दीवारों पर हरी, भूरी या काली परतों के रूप में मिलते हैं। कुछ शैवाल पौधों की जड़ों में जबकि कुछ कवकों के साथ मिलकर लाइकन बनाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि समुद्री शैवाल वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में अहम रोल निभाते हैं। साफ और गंदे पानी में मिलने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की शैवाल प्रजातियां प्रदूषण के स्तर को बताती हैं। इस प्रकार ये प्रजातियां प्रदूषण सूचक की तरह कार्य करती हैं। सीवेज जल के उपचार में विशिष्ट जीवाणुओं के साथ क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, सेंडस्मस व स्पाइरुलिना शैवाल काम में लिए जाते हैं। जीवाणुओं से विघटित होने वाला सीवेज शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण व वृद्धि के लिए काम में ले लिया जाता है। इन शैवालों को समय समय पर निकालकर पशु चारे व प्रोटीन स्रोत

0: की तरह काम में ले लिया जाता है। नदी के प्रदूषित तटों को नम भूमि में मौजूद शैवाल प्रदूषकों का निम्नीकरण करके आत्मसात कर लेते हैं। वायु में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में भी इन जलीय शैवालों की प्रमुख भूमिका हो सकती है। कुछ बिजली घरों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए शैवाल बायो रिएक्टर्स को काम में लिया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को तालाब या छोटी झील में पंप करते हैं, जहां शैवाल पोषण प्राप्त करते हैं। विकल्प के तौर पर कई जगह बायो रिएक्टर्स को धुआं चिमनियों के शीर्ष पर सीधे तौर पर लगा दिया जाता है, जिसमें क्लोरेला वर्गेरिस व क्लोरेला सेलाइना शैवाल काम में लिए जाते हैं। नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टोक, अनाबिना आदि का जैविक खाद की तरह धान के खेतों में प्रयोग करने से नाइट्रोजनकारी रासायनिक उर्वरकों द्वारा होने वाले भूमि प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इस तरह हम शैवालों का कई तरह से उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषण को काफी सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मीरा भटनागर की वार्ता, प्रदूषण नियंत्रण में शैवालों का महत्व। इसी के साथ कार्यक्रम आबोहवा अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:50 का समय है और ये समय है आज प्रसारित किए जाने वाले खास कार्यक्रमों की जानकारी आपको देने का, यानी समय है कार्यक्रम विवरण का। आज सुबह 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। इसमें चर्चा का विषय होगा भावनाओं का वेग सकारात्मक हो। इसके अलावा आपको बताएंगे माता पिता के लिए वैश्विक दिवस के बारे में और आप जानेंगे शहर गतिविधियों के बारे में। सुबह 8:15 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि। इसमें आज आप सुनेंगे जगदीश चंद्र निराला का काव्य पाठ। प्रत्येक सोमवार को फिल्म संगीत में आप सुनते हैं एक ही फिल्म से, तो हमारी आज की फिल्म है फिल्म बरखा। तो आज इसके गीत आप सुनेंगे सुबह 7:30। सुगम संगीत आपकी नजर करेंगे सुबह 8:30। बहनों का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित होगा सुबह 9:30। इसमें चर्चा का विषय होगा संवादहीनता से रिश्तों में बढ़ती दूरियां। इसके अलावा वैश्विक अभिभावक दिवस और सुनेंगे आप भेंटवार्ता श्रीमती सुचि मुंदड़ा से। विषय होगा घर की रसोई से व्यवसाय तक। सुबह 10:00 से ही श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और दोपहर 12:30 से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। शाम 5:00 युववाणी कार्यक्रम होगा। इसमें आज का संवाद होगा AI से डरे नहीं, इसे रचनात्मकता से इस्तेमाल करें। इसके अलावा नॉलेज कॉर्नर में आपको बताएंगे विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस के बारे में। करंट अफेयर्स में आप जानेंगे, साथ ही सुनेंगे रोजगार सूचनाएं और खेल गतिविधियां। किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम चौपाल रोजाना की तरह शाम 7:00 प्रसारित किया जाएगा। इसमें चर्चा का विषय होगा जल है तो कल है और माता पिता का वैश्विक दिवस। इसके अलावा आप सुनेंगे भेंटवार्ता, विषय होगा नवीन कृषि अनुसंधानों को अपनाकर कृषि को लाभकारी बनाएं और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मुने मुकेश चंद्र गोयल। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे कड़ी संख्या 1। शाम 7:30 आप सुन सकते हैं लोक संगीत। रात्रि 8 बजे होगा फिल्म संगीत और रात्रि 9 बजे आप

सुन पाएंगे फिल्म संगीत में बदलते साथी। रात्रि 10 बजे से श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। समाचार प्रभात होगा सुबह 8 बजे और समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि 9:15 बजे। ये तो थी जानकारी आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणां उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभा सदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने

0: भविष्यति। महाराष्ट्रस्य तमिलनाडु राज्यस्य ओडिशा राज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य 18 दिनांके भविष्यति। 91 वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमन कल्याणपुरस्य मुंबई नगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50+ 1970 वर्षात् 70+ 1970 वर्षं यावत् चलचित्र संगीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीय भाषासु कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्ध गायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 स्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
1: FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 7 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत, वंदन और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार कोटा। मार्वलस मंडे मॉर्निंग है, सुबह के 7:01 का समय है। अपने चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा, अपनी रेडियो साथी अलका के साथ। एक और नई सुबह का हो गया है आगाज। स्वागत कीजिए इस नई सुबह का पूरी उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ, और जुट जाइए इसे खूबसूरत बनाने में। तो मुस्कुराइए और बड़ी सी स्माइल के साथ, पूरे जोश, मस्ती और ढेर सारी खुशियों के साथ कीजिए नए दिन और नए महीने की शुरुआत। जी हाँ, 1 जून है आज की तारीख, यानी छठा महीना शुरू हो चुका है। देखिए ना, समय कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, या कहें कि समय कितना तेजी से गुजर रहा है। जून का आज से हो गया है आगाज। छोटे छोटे बच्चे छुट्टियों में पा रहे हैं दादी नानी का दुलार, और इस समय आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या ठंडाई की ठंडक, ये तो आपके साथ है ही। और प्रोग्राम नमस्कार कोटा में हम आपके लिए लाए हैं सूचनाएं, जानकारियां और गीत संगीत की बहार। माना गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है, पर उससे बचकर निकलना भी तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। धूप कितनी भी तेज हो, उससे समंदर सूखा नहीं करते। इसी तरह जिंदगी की तपिश कितनी भी हो, हताश नहीं हुआ करते। और इसी खूबसूरत बात के साथ बढ़ेंगे आगे और साझा करेंगे आपके साथ आज का विचार। तो आज का विचार कहता है, यदि आप भाग्य पर भरोसा करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति वही पाता है जो उसकी तकदीर में लिखा होता है। इसके विपरीत यदि आप खुद पर या अपने आप पर भरोसा करते हैं तो आप वही पाएंगे जो आप चाहेंगे। इसलिए अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा कीजिए, और सच में आप जब अपने आप पर भरोसा करेंगे तो आप वही पाएंगे जो आप चाहेंगे, और अपनी मनचाही मंजिल तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। तो ये तो था हमारा आज का विचार, और अब प्रोग्राम में होगी गीत संगीत की बहार।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। आगामी 4-5 दिनों तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा और भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बीते 2-3 दिन में तेज आंधी और बारिश की वजह से काफ़ी राहत मिली है और पिछले 24 घंटों में दिन के तापमान में लगभग 6 डिग्री और रात के तापमान में लगभग 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई है। और ये सब हुआ है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, जो इन दिनों राज्य में सक्रिय है। और अगले 4

पाँच दिनों तक भी आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोटा शहर का कल का अधिकतम तापमान रहा 37.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 22.6 डिग्री सेल्सियस। और अगली सूचना आप तक पहुंचा दें, जेईई एडवांस का रिजल्ट आज होगा जारी। जी हाँ, आईआईटी रुड़की की ओर से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम आज सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। फाइनल उत्तर तालिका और ऑल इंडिया रैंक भी जारी की जाएगी। 55,000 विद्यार्थियों को 23 आईआईटी संस्थानों की बीटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक, ड्यूअल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये परीक्षा 17 मई को आयोजित की गई थी।

और अगली सूचना ये है कि पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 14 जून को आयोजित की जाएगी और बहुत ही हाईटेक तरीके से होगी इसकी निगरानी। जी हाँ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से 14 जून को प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा पीटीईटी 2026 का आयोजन किया जाएगा। 41 जिलों में 300 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1,26,600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभय कमांड से परीक्षार्थियों पर नजर रखी जाएगी, बायोमेट्रिक व्यवस्था की जाएगी, परीक्षा केंद्रों के चयन, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षार्थियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

और अगली सूचना आप तक पहुंचाते हैं। विशेष शिक्षा प्राध्यापक भर्ती के आवेदन आज से शुरू होंगे। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक विशेष शिक्षा के 121 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी सोमवार से शुरू होगी। आयोग ने भर्ती की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी 30 जून की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्यक्रम की सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। कई बार आपने और हमने ये सुना होगा कि भाई भावनाओं में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना या कोई गलत निर्णय मत ले लेना, है ना? कई बार हम ऐसा कहते भी हैं, सुनते भी हैं। भावनाएं वास्तव में मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित करती है।

0: हैं। जब भावनाएं या इमोशंस का वेग पॉजिटिव हो या कहीं सकारात्मक हो तो कोई भी व्यक्ति जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ता है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार, करुणा, सहानुभूति और सहयोग से समाज में, परिवार में एकता का और सौहार्द का वातावरण बनता है। इसके विपरीत यदि हमारे इमोशंस नेगेटिव हों, तो जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा हमारे अंदर हो, तो इससे परिवार की एकता भी खत्म होती है, समाज की और देश की भी एकता खत्म होती है और ये परिवार, समाज और देश के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को या इमोशंस को सही दिशा देने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। यदि कभी हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो सबसे पहली बात यह है कि हमें पेशेंस बनाए रखना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए और परिस्थिति कोई भी हो, सोच हमारी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। सकारात्मक भावनाएं न केवल मानसिक शांति हमें देती हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखती हैं। और जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमारे इमोशंस पॉजिटिव होंगे, तो हमारे संबंध भी मधुर बने रहते हैं, परिवार से भी, दोस्तों से भी और समाज के बीच भी। तो ऐसे लोग जो पॉजिटिव इमोशंस के साथ रहते हैं, जिनकी भावनाएं सकारात्मक हैं, वो दूसरों के लिए प्रेरणा का सूत्र बनते हैं और अपने कार्यों से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, सोच को अपनी सकारात्मक रखें, अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखें और कोई भी परिस्थिति आए, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
1: '27 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
0: जी हाँ, रेडियो आपका और हमारा, हम सब का प्रिय रेडियो अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी हम खड़े हैं सदी के द्वार पर। रेडियो जन संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसने पिछले 90 वर्षों से समाज, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1930 के दशक में हुई थी और धीरे धीरे ये लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया। उस दौर में रेडियो समाचार, मनोरंजन, गीत संगीत और जानकारियां प्राप्त करने का सबसे प्रभावी और सशक्त माध्यम हुआ करता था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेडियो ने लोगों तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे बाद में कृषि कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा और विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को भरपूर लाभान्वित किया। रेडियो पर प्रसारित होने वाली लघु नाटिकाएं, गीत, नाटक, वार्ताएं और समाचार लोगों की पहली पसंद रहे, जो ये पसंद आज भी बरकरार है। समय के साथ हालांकि बहुत तकनीक में विकास हुआ और फिर आया दूरदर्शन। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे नए नए माध्यम सामने आए, फिर भी रेडियो ने अपनी उपयोगिता बनाए रखी। एफएम रेडियो के आगमन से रेडियो की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। आज रेडियो मोबाइल फोन, कार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से सुना जा सकता है। रेडियो का 90 वर्षों का सफर नवाचार, विश्वसनीयता और जनसेवा का प्रतीक है। यह आज भी कम लागत में सूचना और मनोरंजन उपलब्ध करवाने वाला सबसे प्रभावशाली माध्यम है। बदलती तकनीक के बावजूद रेडियो की मधुर आवाज लोगों के दिलों में अपनी अलग और विशेष पहचान बनाए हुए है।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। माना पिछले दिनों आंधी बारिश का दौर रहा तो तापमान कुछ कम हो गया, लेकिन फिर भी गर्मी है और इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको कोई ज़रूरी काम हो, कोशिश करें कि 10-11 बजे तक सुबह उस काम को कर लें। घर से बाहर आप जा रहे हैं तो कुछ तरल पदार्थ पी करके ज़रूर जाएं, कुछ खा करके जाएं। इन दिनों नींबू पानी, आम पना, छाछ, लस्सी, शरबत, इनका प्रयोग अधिक से अधिक करें। और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। इन दिनों बच्चों की भी छुट्टियाँ लग रही हैं, कुछ लोग बच्चे समर कैंप में जा रहे हैं, तो प्रयास करें कि सुबह 10 बजे तक उनके जो भी कैंप की गतिविधियां हो वो पूरी हो जाएं, या फिर शाम को 5 बजे बाद इस तरह की गतिविधियां हो। इसके अलावा बाहर निकलें जब घर से तो सिर पर स्कार्फ, टोपी या अपनी स्वाफी को बांध करके निकलें, साथ में अपने पानी की बोतल को लेकर निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और अचानक से हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, और आजकल जो बहुत तेज़ गर्मी है इसके कारण हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए तेज़ गर्मी में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

0: श्रोताओ एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं आज है माता पिता के लिए वैश्विक दिवस। जी हाँ, यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। हर साल 1 जून को ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में इस विशेष दिन को मनाना तय किया गया था। तभी से हर साल 1 जून का दिन हम वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में मनाते हैं। माता पिता जो तन मन धन से समर्पित होकर अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करते हैं, अपने निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार रूपी बगिया को सींचते हैं, संवारते हैं, तो आज का ये दिन माता पिता की सराहना करने का, उनका सम्मान करने का, उनके प्रति आदर और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। माता पिता अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए अपना खुद का जीवन समर्पित कर देते हैं। अभिभावक परिवार का आधार स्तंभ होते हैं जो अपने बच्चों को प्रेम, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कार से पल्लवित और पोषित करते हैं। वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। तभी तो बच्चे आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सफल नागरिक बन पाते हैं। आज के इस हाईटेक युग में हालांकि बहुत सारी सुविधाएं हैं और जो नए नए माता पिता हैं वो इन सुविधाओं से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय दें और उन्हें संस्कारित करें। आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है तो आज आपका और हमारा, हम सभी का ये फर्ज है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके प्रति हम आभार प्रकट करें। हालांकि तोहफा एक बहुत छोटी चीज है उनके लिए, लेकिन फिर भी ऐसा प्रयास करें कि कोई उनकी पसंद की चीज हो तो हम उन्हें तोहफे के रूप में दें, कोई ट्रीट दें हम उन्हें, या फिर ऐसी कोई मनपसंद डिश हम बना करके उन्हें खिलाएं जो उन्हें अच्छी लगती हो। और सबसे बड़ी बात, हम उनके साथ बैठें, हम उनके साथ बातें करें, हम उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, तभी तो इस दिवस को मनाने की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। तो आज माता पिता के वैश्विक दिवस के अवसर पर सभी माता पिताओं को हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।

और श्रोताओं, हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हमें आपसे लेनी होगी विदा। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीना ने और प्रस्तुति रही राजेश महावर की। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार कोटा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 MHz पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत। और श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार को फिल्म संगीत में आप सुनते हैं एक ही फिल्म से। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1959 में कृष्णन पंजू के निर्देशन में बनी फिल्म बरखा के गाने। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फिल्म संगीत में आज आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से और हमारी आज की फिल्म है बरखा। AVM प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म बरखा के निर्माता थे AV मैयप्पन। आपको बता दें फिल्म बरखा एक सफल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जो अपने दौर में काफी हिट रही। आइए यहां सुनवाते हैं आपको इस फिल्म का ये गाना

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक ही फिल्म से आप सुन रहे हैं और हमारी आज की फिल्म है बरखा। फिल्म बरखा एक सुपरहिट तमिल फिल्म का ऑफिशियल रीमेक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत थे, तो आइए अब यहाँ आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत गाना।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक पे। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बरखा के गीत। फिल्म बरखा के मधुर गीतों को अपनी आवाजें दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों ने, जबकि इस फिल्म के गीतों को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और सुमधुर संगीत तैयार किया चित्रगुप्त ने। तो आइए यहाँ सुनते हैं एक और गाना फिल्म बरखा से।

फिल्म संगीत में आज आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है 1959 में बनी फिल्म बरखा। इस फिल्म के गीत आप सुन रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जगदीप और नंदा ने, जबकि सहायक भूमिकाओं में रहे शोभा खोटे, लीला चटनिस, अचला सचदेव और साथी। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का यहाँ एक और खूबसूरत सा गाना।

फिल्म बरखा के गीत आप सुन रहे हैं। फिल्म गीत संगीत के लिहाज से सुपर डुपर हिट साबित हुई। गीत संगीत और नृत्य के लिहाज से इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और व्यावसायिक रूप से भी ये फिल्म बहुत

0: आज आपने सुना सन 1959 में बनी फिल्म बरखा के गीत।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में

0: आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
6: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण

0: के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम काव्यांजलि। आज आप सुनेंगे कवि जगदीश चंद्र निराला का राजस्थानी काव्य पाठ।
3: दोस्तों, आकाशवाणी कोटा से मुँह डॉक्टर जगदीश निराला और मुँह मांगरोल की भूमि से आयो छू और मांगरोल की रचना मुँह लायो छू। देखो आप, मांगरोल री मांगरोल रूपाली प्यारी मांगरोल, मांगरोल री मांगरोल रूपाली प्यारी मांगरोल, थारो रूपालो सणगार नंदिया घाटिया की बाहर, ऊंचा टीला माही रमगी नीचे घाटिया माही गमगी, हरियाणो ओड़पू मचो झीणा घूंघट में मुस्काई, मस्जिद की मीनारा चढ़गी थारी दो आख्या शर्माई, ऊंची ऊंची मड़िया थारा जोबन की हलोल, मांगरोल री मांगरोल रूपाली प्यारी मांगरोल, थारा शेर सा सपूत प्रथी सिंह वीर रजपूत, ज्याकी वीरता निराली सुरली उबी कवन आली, भगवान परो भगजा को बाग झू पड़िया तेजा जी बाग, छत्रिया की चतराई नाली अमर परो दादा की पाली, सोरती बावड़ी पर भोला जा बैठिया छे कोला, सराणा को मीठो कुओ लाडलो टंकिया में भर लियो, टूटा टूटा टंकिया टंकिया पानी दियो रोल, मांगरोल री मांगरोल रूपाली प्यारी मांगरोल, बुनकर चामल की कोलोनिया सुवाड़िया भीड़ गोराजी बोलिया, बुनकर चामल की कोलोनिया सुवाड़िया भीड़ गोराजी बोलिया, राम कोई जो घाटा अनुमान खाजा टोड़ी का मसान, जा गंगा उगणी बहरी बीच में भोड़ा छबम लहरी, जाटा टोड़ी का रजपूत जा का डर सुभागे भूत, थारो मोल गणो अनमोल, मांगरोल री मांगरोल रूपाली मारी मांगरोल, मांगरोल री मांगरोल रूपाली प्यारी मांगरोल, थानक लाल बाई को ऊंचो थानक लाल बाई को ऊंचो, कीर्तन रेगल मंडल गाव महावीर मंडल खेल दिखाव, मोदी खाना को चौगान ढांडा ढोरा को भगवान, कुंज को चौक बड़ो अनमोल, मांगरोल री मांगरोल रूपाली प्यारी मांगरोल। अर लियो दोस्तों, एक यो गीत ऐसा समय को जब मु गीत लिखवाई लगे जो माँ बनिया को गीत छे संस्कारित को गीत छे, माई अपनी बेटी का कान काई काई शिक्षा दे छे, माई की सीख देखो, पाली पोसी लडवण तू पला के कारण, अरे तोरण बांधो पोड़ा आग वहां के कारण, पाली पोसी लडवण तू पला के कारण, तोरण बांधो पोड़ा आग वहां के कारण, मुन सखाई काम आओगी सासू आग न बोले, छोटी नंदल हो तो उसू भी हंस हंस के बोले, कयो टाल जे मत प्रीतम को ए कयो टाल जे मत प्रीतम को, वहां के कारण पाली पोसी लडवण तू पला के कारण, सहज छुडावण भगत की उठजे जीसू सहज मंडावे छी, गोबर करबो पानी लाबो गऊ को खूंटो सिंचावे छी, मारी बाता याद राख जे मारी बाता याद राख जे, वहां के कारण अर पाली पोसी लडवण तू पला के कारण, पाली पोसी लडवण तू पला के कारण, सामी रोटी भूखा ताई देबो मती भुला जेरी, नत दर्शन कर बालम का तू पाछ रोटी खा जेरी, हरक दखाजे हरदम बेटी वहां के कारण, पाली पोसी लडवण तू पल

कारण सब सु हलमल खुशी सुरीजे, सबका मन में बस जाजे, अतना पे भी दुख आवे तो बेटी हंसकर सह जाजे, हरदा को काट टुकड़ो ज्यो चू वाक कारण, अर पाली पोसी लडवन तू पलाक कारण, तोरण बांजो पोड़ा आग वाक कारण। और लियो दोस्तों एक गीत और सुनो, गोरी पावा में ए थरा पावा में बांदरम जोड़, धीरा धीरा नाच बो सिखो गोरी पावा में, हमारे नाच बा में देरी काई हो, थे ढोल की बजाब तो सिखो जी मरा, नाच बा में देरी काई हो, थे ढोल की बजाब तो सिखो। कंचन बरण्यो लाखा में दम के थारो रूप, शर्म्या मर जा देख के है सावणी वा धूप, गोरा गाला रो हे गोरा गाला रो गुलाबी दम के रूप, थोड़ो सो घूंघट खाच बो सिखो गोरी पावा में बांदरम जोड़, धीरा धीरा नाच बो सिखो मारे नाच बा में देर काई हो, थे ढोल की बजाब तो सिखो, थे हो निराला साहेबा मैं हूं था किनार, थाने देख्या नीप जे है हिबड़ा माही प्यार, मारे नाच बा में हे घूंघट खाच बा में देरी काई हो, मर घूंघट खाच बा में देरी काई हो, ते घूंघटो उघाड़ बो सिखो गोरी पावा में बांदरम जोड़, धीरा धीरा नाच बो सिखो। मांगरोल में चाल सु था किलारा पीव, जद ना देखो दो घड़ी मर सुख जावे जीव, मारे हास बा में हमारे हास बा में देरी काई हो, ते नीड़े नीड़े आब तो सिखो गोरी पावा में बांदरम जोड़, धीरा धीरा नाच बो सिखो गोरी पावा में बांदरम जोड़। और लो दोस्तों एक छोटो सो भजन भी देखो आप, सुन चढ़ी री सुन चढ़ी घनी फरी तू घनी उड़ी, हे अब तो बट सायर थोड़ी बात ले विचार, जिंदगानी थारी दिन चार नखराली मारी, जिंदगानी थारी दिन चार, सुन चढ़ी री सुन चढ़ी रूपालो सो भालो थारो दिल एक दन जावेगो, जी बलसू रावण मर बैठो धूला में मल जावेगो, गर्भ की अकाली छाया दुखियारी घनी, जिंदगानी थारी दिन चार नखराली मारी, जिंदगानी थारी दिन चार, सुन चढ़ी री सुन चढ़ी सुना का पिजरा में उलझी, भूल गई री तू गेलो जस्या पढ़ाई उस्या तू पड़गी, सुनो नहीं मन को हेलो, थारी मारी छोड़ बावली उड़ जा पंख पसार, जिंदगानी थारी दिन चार नखराली मारी, जिंदगानी थारी दिन चार, सुन चढ़ी री सुन चढ़ी घनी परी तू घनी उड़ी, कई मलगा छल छंदी जाल बछा डाल्या फंदी, सावधान तने रहनो है जुलम कदी नहीं सहनो है, निराला कर मासू कर ले काया को सुधार, जिंदगानी थारी दिन चार नखराली मारी, जिंदगानी थारी दिन चार, सुन चढ़ी री सुन चढ़ी घनी परी तू घनी उड़ी, अब तो बैठ सायर थोड़ी बात ले विचार, जिंदगानी थारी दिन चार। लो सुनो दोस्तों हड़ती को एक गीत और सुनो, छोड़ो ना बालम जी सासू जी जागे, छोड़ो ना सासू जी जागे मरा।

0: छोड़ो ना बालम जी, सासू जी जागे छोड़ो ना। कांचा की चूड़िया खण खण खण बाजे, कांचा की चूड़िया खण खण खण बाजे। बारे सुनेगा कोई आख्या मरी लाजे, आंगली मरोड़ी बदलो क्यों थाने। नथड़ी की लूमा झूमा तोड़ी क्यों थाने, हाथ जोड़ू था का शर्माने। लागे छोड़ो ना, छोड़ो ना बालम जी, सासू जी जागे छोड़ो ना। अदपा क्या नींबू छे अतनी तो जानो, अदपा क्या नींबू छे अतनी तो जानो। पाकेगी नारंगिया धीरज रखाणो, बरसेगी बादली सावन की सैया। बागा में बोलेगा मोरिया पपैया, ठंडी हवा का फटकारा लागे छोड़ो ना बालम जी, सासू जी जागे छोड़ो ना।
1: ये दोस्तों एक श्रृंगार को की सुनो। लाजा मरजिया की हे, लाजा मरजिया की चांदनी, पुन्यू की पिया दूरा सर को, राखो तोड़ो बसवास साथ छे उम्र भर को। लाजा मरजिया की हे, लाजा मरजिया की चांदनी, पुन्यू की पिया धीरप राखो। हाल तो डोडी छू साजन सोरम भी न जागी, कंचन बरण्यो रूप मारो था की नीयत लागी। हाल तो डोडी छो साजन सोरम भी न जागी, कंचन बरण्यो रूप मारो था की नीयत लागी। मारी जवानी थारो रूप जोड़ो रे मिल्यो दाई धड़को। लज्जा मर जागी, लज्जा मर जागी चांदनी, पुन्यू की पिया धीरप राखो। बागा में हरियाली छाई आंब आ गया मोर, बागा में हरियाली छागी आंब आ गया मोर। नींबू पीड़ा पड़बा लाग्या कूक्या मन का मोर, खोरी काची खोरी काची धरी कचनार। बलम जी धीरज राखो, लज्जा मर जागी हे, लज्जा मर जागी चांदनी, पुन्यू की पिया दूरा सर को। रूपाली या गोरड़ी घनी घनी इतरा, रूपाली या गोरड़ी घनी घनी इतरा। हारी भरली खोडली पण पाछी नट जाए, आरी भरली खोडली या पाछी नट जाए। मिले गेल में सेन करिया नेणा ने मटकावे रे, मिले गेल में सेन करिया नेणा ने मिटकावे रे। कलपे मारो जीव भापड़ो उड़ उड़ नंदरा जावे रे। बड़ी कठन सू नंदरा आवे, बड़ी कठन सू नंदरा आवे या सपना में आये रे। हरी भरले खोडली या पाछी नट जाए, हरी भरले खोडली या पाछी नट जाए। मीठी बात करे मिसरी जू काना में रस घोल दे, मीठी बात करे मिसरी जू काना में रस घोल दे। पकी पकाई खाबा लाग्यू रंदी रंदाई ढोल दे, पकी पकाई खाबा लाग्यू रंदी रंदाई ढोल दे। हाथ झटकिया बारे आजा, हाथ झटकिया बारे आजा, घूंघट में मुस्काय रे। हारी भरले खोडली या पाछी नट जाए, आरी भरले खोडली या पाछी नट जाए। तंतर मार्या तंतर मार्या जंतर मार्या, तंतर मार्या भरवा ल्याता बीज रे। तंतर मार्या जंतर मार्या भरवा ल्याता बीज रे। आज काल करता करता ही कड़गी आखा तीज रे। मूतर सूया हास हास के, मूतर सूया हास हास के, खड़ी खड़ी बड़खाए रे। हरी भरले खोडली या

अभी आप सुन रहे थे कवि जगदीश चंद्र निराला का राजस्थानी काव्य पाठ। इसी के साथ कार्यक्रम काव्यांजलि अब समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेरी दीवानी एल्बम से कुछ गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं इस तराने के साथ।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं एल्बम तेरी दीवानी से कुछ गीत। अभी आपने सुना नुसरत फतेह अली खान को, और आइए अब आपको सुनवाते हैं रब्बी शेरगिल की आवाज में ये गीत।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेरी दीवानी एल्बम से कुछ तराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गीत।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आपके अपने चंबल चैनल पर। श्रोताओं, जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही। कल 89 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। अनेक उन्होंने रोमांटिक और भावपूर्ण गीतों को अपनी सुनहरी आवाज दी थी। उनकी आवाज लता जी से काफी मिलती जुलती थी। वर्ष 1960 से 70 के दशक में सुमन कल्याणपुर जी ने 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। वर्ष 1923 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आइए यहाँ आपको सुगम संगीत में एक गीत सुनवाते हैं सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में, जो फिल्म ठोकर से हमने लिया है।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर जी को फिल्म ठोकर में, और आइए आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको तेरी दीवानी एल्बम से ये अगला गाना कैलाश खेर की आवाज़ में।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं तीन तेरी दीवानी एल्बम से कुछ गीत। तो आइए एक और गीत आपको सुनवाते हैं कैलाश खेर की आवाज में।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे तेरी दीवानी एल्बम से कुछ गीत। इसी के साथ सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102 और 103.6 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी, 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
1: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान में 3 सदस्यों भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 1 आरए सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। वहीं 332 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। इस साल 56,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बोर्ड ने कहा कि वह पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे राजस्थान और दिल्ली के जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 10 दिन का ये चिंतन शिविर पुष्कर में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाश

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। लगातार पिछले दो दिनों से आंधी बारिश के दौर से तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागौर में तड़के 4 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारा और भीलवाड़ा में भी अल सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं कल जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। आसमान से दूर ही धूल का गुबार नजर आया। जिले के नाचना, सुल्ताना और मोहनगढ़ में बवंडर का काफी असर रहा। नाचना में ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और हनुमानगढ़ के संगरिया सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 5.5 सेंटीमीटर बारिश कोटपुतली के शाहपुरा में दर्ज की गई। आंधी बारिश के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत बनी रहने के आसार हैं। प्रदेश में आए प्रचंड तूफान और बारिश के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम के तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर प्रभावित हुए। इनमें से 387 गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि इनमें से 366 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वहीं 21 गांव में सप्लाई सुचारू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण के स्रोत के रूप में दूध के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। ये डेयरी उत्पादन, सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। विश्व दूध दिवस के मौके पर देश में अनेक स्थानों पर डेयरी और कृषि संस्थानों में सम्मान समारोह और जागरूकता शिविर रखे गए। उधर प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी में विश्व दूध दिवस के मौके पर ऊंटनी के दूध का निःशुल्क वितरण कर इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और मशहूर गायक मोहम्मद रफी के साथ भी सैकड़ों गीत गाए।

प्रदेश में आज से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का यह अभियान 30 जून तक संचालित होगा। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के तहत होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल 2026 का खिताब दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4

0: जून तक हीटवेव से राहत के आसार और विश्व दुग्ध दिवस आज इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102 और 103.6 MHz साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये गाना। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी का गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर, और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये गाना फिल्म परदेश से। आवाज है कुमार सानू की, आनंद बख्शी का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आपके अपने चंबल चैनल पर, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अंजाम से ये गाना, अभिजीत की आवाज में समीर का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है कोयला। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। इंदिवर का गीत है और राजेश रोशन का संगीत।

के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

सखियो, रेडियो जो है ये सिर्फ आवाज का माध्यम नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का एहसास है। यहाँ बातें दिल से शुरू होकर आपके दिलों तक पहुंचती हैं और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई अकेला होता है तो वो आवाज का सहारा ढूंढता है। कभी सोचा है सखियो कि अगर घर में बातें ना हो, महिलाएं अपनी समस्याएं बताना छोड़ दें, बच्चे अपना डर छुपाने लगें, तो सोचिए बिना संवाद का वो समाज कैसा होगा। आपसे फिर से बातें करने के लिए मैं हूं आपकी अपनी सखी तेज मोहन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम महिला जगत में। सखियो, क्या आपको याद है वो फिल्म, पहली मूक फिल्म जो बिना संवादों की थी, जब भावनाएं प्रदर्शित की जाती थी, आंसू होते थे, मुस्कान होती थी, लेकिन शब्द नहीं होते थे। और जब बोलने वाली फिल्में आई तो हम सभी ने जाना कि आवाजों से भी रिश्ते बनते हैं, संवादों के माध्यम से भी दिल जुड़ते हैं। लेकिन आज इतनी तरक्की के बाद हमें अपने मन की आवाज भी सुनाई नहीं देती। घर में मोबाइल की स्क्रीन चमकती है, पर रिश्तों की चमक का क्या, जो लगातार संवादहीनता के कारण समाप्त हो रही है। सखियो, बातचीत कम होने से एक दूसरे में अविश्वास बढ़ता है और कई बार सखियो हम ये सोचते हैं कि बहस करने से अच्छा चुप हो जाएं, पर यह चुप्पी रिश्तों के लिए धीमा जहर होती है। याद रखिए, संवाद वो पुल है जो रिश्तों में दूरियां मिटाता है। अक्सर जब माँ मेरी फोन करती थी, मैं कहती थी माँ रुक कर करती हूँ, अभी व्यस्त हूँ। आज मैं इंतजार करती हूँ कि माँ का फोन आए, दूसरी तरफ से आवाज आए बेटा कब आएगी। इसलिए सखियो, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो बार बार आपको फोन करता है तो झुंझलाइए मत, क्योंकि एक दिन वही फोन सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। इसका अर्थ है सखियो कि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। वो कहते हैं ना सखियो कि जहां मन की बात कहने की जगह खत्म हो जाए, वहां दूरियां शुरू हो जाती हैं। सखियो, आज हम सबके पास रील्स देखने का समय है, ऑनलाइन रहने का समय है, और ये भी देखने का समय है कि हमारे स्टेटस पर जो फोटो लगी है उसे कितने लोगों ने देखा है और कितनों ने पसंद भी किया है। लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं है कि एक दूसरे से उसका हालचाल ही पूछ लें। पहले सखियों, मोबाइल से रिश्ते नहीं जुड़ते थे, दरवाजों से जुड़ते थे। मोहल्ले में अगर कोई उदास होता था तो सामने वाले घर से उसके लिए गर्मा गर्म चाय आ जाती थी और किसी के घर बनी हुई एक सब्जी एक कटोरी में दूसरे के घर पहुंच जाती थी। और सखियों, सबसे खूबसूरत बात यह थी कि बिना काम के एक दूसरे के घर चले जाते थे, दो दो महीने ननिहाल या रिश्तेदारों के घर रहना भी बोझ नहीं लगता था। तब बच्चे एक साथ खेलते थे, महिलाएं आंगन में या छतों पर घंटों बातें करती थीं। लेकिन आज हमारे घरों के दरवाजे तो बड़े हो गए लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। अब कोई मिलने आ जाए तो पूछा जाता है कोई काम था क्या। संवाद होते हैं तो महिलाओं में तनाव नहीं होता और संवादहीनता के कारण मनुष्य तनाव का शिकार हो जाता है। और आज की चर्चा हमें ये याद दिलाएगी सखियो कि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, इन्हें समय देना पड़ता है, क्योंकि जब घरों में संवादहीनता आती है तो रिश्तों में दूरियां आती हैं। घर में आवाजें जिंदा रखिए, रिश्तों में संवाद जिंदा रखिए। माँ की ममता, पिता का साया, इनका सम्मान जिंदा रखिए, क्योंकि रिश्ते तब तक ही रिश्ते होते हैं जब तक उनमें बातें बाकी होती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आज की चर्चा सफल होगी, घरों में संवाद बना रहेगा, रिश्तों में गर्माहट रहेगी। और जब सखियों हम बात कर रहे हैं संवाद की, तो कलाकार अपने अभिनय से हमसे बातें करते हैं और गायक अपने गीतों के माध्यम से, और ऐसी ही गायिका थी सुमन कल्याणपुर। 2023 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। सुमन जी ने मराठी, असमिया और गुजराती कई भाषाओं में गीत गाए थे। इन्हें आवाज में लता मंगेशकर जी की परछाई माना जाता था, क्योंकि दोनों की आवाजें एक सी थी। सुरों की सरिता बहती रहेगी, गीतों की खुशबू

0: कभी जो हाथ रसोई में काम करके अपने परिवार का पेट भरते थे, वे आज घर के साथ कारोबार भी संभाल रहे हैं। आज की भेंट वार्ता सिर्फ व्यवसाय की कहानी नहीं, उस हिम्मत की कहानी भी है जो कहती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है रसोई से व्यवसाय तक, और शुचि मुंद्रा जी से जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने हुनर को पहचान बनाकर नई मिसाइल कायम की है।
1: वो चूल्हे की तपिश, वो हाथों का हुनर, सिर्फ खाना नहीं परोसती हैं, वो अपना जिगर। सपनों को बेलकर मेहनत की आंच पर सेका है, रसोई से बाजार तक हमने माँ का रूप देखा है। छोटी सी शुरुआत और मेहनत के आंच पर जब सपने पकते हैं तो रसोई का एक कोना पूरे साम्राज्य की नींव बन जाता है। सखियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेहनती और हुनरमंद महिला से जिन्होंने घर की रसोई से शुरुआत करके अपने हाथों के स्वाद और सजावट की कला को व्यवसाय में बदल दिया। आपने हाथ से बने अचार, पापड़ी, गुने, मटरी, ये सभी व्यवसाय का रूप ले गए और आप आत्मनिर्भरता की मिसाल बने। सखियों, आज हमारी बातचीत का विषय है घर की रसोई से कारोबार तक, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं शुचि मुंद्रा जी। आइए स्वागत करते हैं हमारी इन विशेष अतिथि का। स्वागत है शुचि जी आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। नमस्ते।
2: नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुचि जी, सबसे पहले तो हम आपसे आप ही के काम के बारे में जानना चाहेंगे।
2: मेरा काम है घर से वे मठी, अचार, ये सब चीजें बनाकर बेचती हूँ, और मेरे हाथ का ही हुनर मैं सभी को बताती हूँ। मैं अपने हाथों से ही सब चीजें बनाती हूँ ताकि शुद्ध चीजें लोगों तक अच्छे से पहुँचे और उनके स्वास्थ्य सही रहे।
1: आप जब भी कोई भी अचार या पापड़ बनाती हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखती हैं शुचि जी?
2: मैं इन बातों का ध्यान रखती हूँ ताकि वो एक तो सबसे पहले शुद्ध हो, शुद्ध तेल का प्रयोग हो, घी का हो, और जो हाथों की सफाई है वो बिल्कुल शुद्ध रहनी चाहिए। गंदे हाथ हम नहीं रख सकते ताकि उनसे संक्रमण ना फैले।
1: शुचि जी, जैसे आप इतना कुछ बनाती हैं, गुने, अचार, पापड़, तो ये रेसिपीज आपने कहीं से सीखी या आपको परिवार से विरासत में?
2: ये मैंने मेरी मम्मी से सीखी है।
1: अच्छा, तो आपको कैसा लगता है आज के समय में?
2: आज के समय में मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने का हुनर लोगों तक पहुंचा रही हूं, और इससे और भी लोग जागृत हो कि हमको शुद्ध बाजार में शुद्ध चीज खाने को मिल रही है।
1: देखियो, जब भी ये चीजें बनाती हैं तब इन्हें अपनी माँ की स्मृति हो जाती है, और जब भी कोई व्यक्ति उन चीजों का सेवन करता है उन्हें भी माँ की रसोई याद आ जाती है। तो जी जी शुचि जी, आप डेकोरेशन का काम भी करती हैं, तो उसमें आप क्या क्या करती हैं?
2: मैं डेकोरेशन के काम में दिवाली से डेकोरेशन हुआ, रंगोली, बांदरवाल, दीपक हुए, सारे हाथ से बनी हुई चीजें, राखियां बनाती हूँ मैं, सब चीजें हाथ से बनाती हूँ। और मेरी ये सब चीजें बूंदी में ही नहीं जबकि मेरी पूरे राजस्थान और आउट ऑफ इंडिया में भी सारी चीजें फेमस है।
1: बहुत ही उम्दा काम आप करती हैं। तो शुरुआत में जब आपने

0: व्यवसाय को शुरू किया तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: मेरे को सबसे पहले पैसों का सामना करना पड़ा, फाइनेंस से रिलेटेड चीज का। लेकिन मेरे को ये लगा कि चलो छोटी से स्टार्ट करते हैं, अपन अच्छा लेवल पास कर लेंगे। हमेशा मैंने हिम्मत रखी, मेरे इस हिम्मत में मेरे पति का पूरा सहयोग था। उन्होंने हर चीज पे मेरे को स्टेप बाय स्टेप कि हाँ अपन तुम कर सकती हो ऐसा मिला करने बोला, तो मैं और आगे बढ़ती गई और अभी तक बढ़ती जा रही हूँ
0: जी। और जितनी भी बात करें, हम परिवार का भी आपको सहयोग मिला है, तो जिस दिन आपके हाथ में वो पहली कमाई आई, उस दिन का आपका अनुभव कैसा था, आप कैसा महसूस कर रही थी उस दिन?
1: मैं उस दिन बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और मैं सबसे पहले मैंने भगवान ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद मैंने अपने बच्चों और मेरे पति का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको उनकी नानी के पास छोड़ के जाती हूँ। और उससे मेरे को सबसे अच्छा मेरे को यही लगा कि हाँ इन बच्चों के और पति का सहारा, इसलिए मेरी पहली कमाई मेरे हाथों में आई।
0: शुचि जी, अगर आज आपसे कहा जाए कि एक बार आपको पीछे मुड़कर देखना है और जब व्यवसाय शुरू नहीं किया था उस समय की शुचि और आज की शुचि में क्या फर्क है?
1: उसमें बहुत फर्क है। मैं पहले से ही सोचती थी कि मेरे को अपना खुद का कुछ काम करना है और अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो वो आज मेरे उस मुकाम तक मैं पहुंच चुकी हूँ। लोग मेरे को अपने खुद के नाम से जानते हैं, मेरे को खुद अपने नाम से जानते हैं कि हाँ मैं एक शुचि हूँ और हर जगह पर मेरा अपना नाम ही काफी होता है।
0: अगर महिलाएं भी इस कार्य को शुरू करना चाहें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है?
1: सबसे पहले तो ये चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है मेहनत। अगर अपन ये सोचे कि हाँ बस हमने इतना सा काम किया जिसमें हमारा काम हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है। हमको मेहनत और लगन के साथ ये चीज काम कर सकते हैं। अगर हमने सोच लिया, मन में ठान ली कि नहीं हमको रात दिन एक होकर कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो हर महिला आगे कर सकती है।
0: क्या कम पैसों में भी इसे शुरू किया जाता है?
1: हाँ यस, हम बहुत कम पैसों में भी इनको शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि खाने से बनी चीजें अधिकतर सामान सब हमारे घर में उपलब्ध होता है, तो हम उस चीज को बनाकर बेच सकते हैं और फिर जो पैसे हमारे पास आए उससे हम अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं।
0: शुचि जी, यहाँ एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जब भी बात करते हैं अचार पापड़ गुने मटरी की, तो सबसे बड़ी एक जो समस्या होती है बाजार उपलब्ध होना। तो वो एक महिला को अगर वो घर से व्यवसाय शुरू कर रही है तो वो उस बाजार तक अपनी पहुंच कैसे बना सकती?
1: बाजार में अपन को लोगों की बहुत सारी बातें सुनने को भी पड़ती है कि ये तो बाजार का जैसा टेस्ट नहीं है, आपने ऐसा बनाया है वैसा, बहुत सारे नकारात्मक पॉइंट अपने सामने आते हैं। लेकिन अपन को कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है कि आप एक बार टेस्ट तो करिए बाजार से, और अपने हाथ के हमारे हाथ के हुनर में बहुत रात दिन का अंतर होता है।
0: शुचि जी, जब आप घर से व्यवसाय कर रही हैं तो परिवार में और व्यवसाय में अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को समय नहीं दे पाते, तो आप दोनों में संतुलन कैसे बना?
1: मैं दोनों में संतुलन, सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे पति का साथ रहता है। मेरे बच्चों को भी मैंने इसी लायक बना रखा है कि हाँ उनको भी पता है कि हाँ इस समय पे ये काम हमारा होना जरूरी है। मैं सभी जगह पर अपना अपना काम और समय मैंने बांट रखा है, इस समय पर मेरे को क्या काम करना है और बच्चों के साथ और परिवार के साथ मेरे को कैसे तालमेल बैठाना है।
0: और कभी ऐसा हुआ कि किसी ग्राहक ने कोई सामान आपसे लिया हो और उसका सेवन करने के बाद उसने आपकी तारीफ की हो, तो उस समय में आपका दिल किस प्रकार से भावनात्मक एहसास हुआ उसे?
1: मेरे को उस समय मेरा बहुत आनंद और मेरे को बहुत खुशी हुई कि ग्राहक ने मेरी बहुत प्रशंसा की और मेरे को और ज्यादा प्रोत्साहित होने को मिला कि मैं कुछ नहीं, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती
0: हूँ। अगर कोई महिला यह सोचे कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उसको यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति में एक अपनी कला होती है, हर व्यक्ति को एक आगे बढ़ना है तो वो कभी भी कहीं भी कोई सा भी कार्य कर सकता है और वो उस चीज के लिए आगे बढ़ सकता है। हर व्यक्ति अपने कार्य में कला में एक निपुण होता है, तो अगर अपन अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि हाथ की कला कोई छीन नहीं सकता है।
0: जी जी, अगर पुरानी शुचि से आपको कुछ कहना हो, उसे कुछ बोलना हो, तो आप उसे क्या संदेश देंगी?
1: मैं ये संदेश दूंगी कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लोगों के मैंने बहुत सारे ताने सुने, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अपने दिल जो बोला मैंने वो कार्य किया कि मैं कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना नाम खुद आगे बढ़ते हुए बताना चाहती हूँ सभी को। मैंने बहुत मेहनत करी और अभी भी मैं उस चीज में आगे बढ़ रही हूँ और मेहनत करती जा रही हूँ। जो मेरे हाथ का

0: काम है, अचार मछली के अलावा जो डेकोरेशन का काम है, राखियों का काम है, मेरा बहुत अच्छा काम है और लोगों को रेट वाइज में इतना पसंद आता है वो सामान कि लोग मेरी तारीफें करते हैं।
1: आपका सपना क्या है सूची जी?
0: मेरा सपना ये है कि मेरे को एक बहुत बड़ा स्टेज मिले और मैं अपना जो काम है वो बहुत अच्छे लेवल तक उस काम को कर सकूं, और अगर हुआ तो मैं अपने ही साथ में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको नौकरी दूं।
1: बहुत ही उत्तम विचार है आपका। आप और महिलाओं को भी जोड़ना चाहती हैं और उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह से संबल देना चाहती हैं। ये बहुत ही अच्छा विचार है। तो अगर कोई सखियां जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, या हम ये कहें कि आप हमारी सखियों को जाने से पहले क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे भी रसोई से अपने हुनर को लेकर व्यवसाय शुरू कर सके?
0: मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले समय, आपको समय का प्रबंधन देखना होगा। अगर आप समय से कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल हो सकेंगे। अगर और जिस काम को आपको करना है उस काम को तन मन लगन से वो काम आप करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। और होड़ा होड़ी आपको कभी किसी से नहीं करनी चाहिए कि ये काम वो कर रहा है तो मैं ये काम क्यों करूं। अगर आपने मन में ठान ली कि नहीं कोई करे या नहीं करे लेकिन मेरे को अपना नाम आगे बढ़ाना है और अपना काम आगे बढ़ाना है, लोगों तक अपनी पहचान बढ़ानी है, तो तन मन से और लगन से और मेहनत से और समय का प्रबंधन रखते हुए मैं वो कार्य करके हुए आगे बढ़ सकती है।
2: कभी ऐसा हुआ कि आपने लोग क्या कहेंगे और आपने कभी ये सोचा हो कि मुझे रुक जाना चाहिए?
0: देखिए, आज के जमाने में हर व्यक्ति ये चाहता है आगे बढ़ने का और कोई दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ के देखता हुआ नहीं चाहता है कि हम इससे आगे बढ़े, ये हमारे आगे क्यों बढ़ रहा है। तो ये है कि अपना काम करो, खुशी से करो, लगन के साथ करो, लोग तो क्या कहेंगे कहते रहेंगे। अगर अपना काम अच्छा है तो आज नहीं तो अपनी मेहनत थोड़े दिन बाद लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगी कि हाँ इस व्यक्ति को हम रोकते थे, करते थे, टोकते थे, लेकिन इसने अपना लक्ष्य ठान लिया और वो अपनी मंजिल उसने हासिल कर ली, तब अपने आप लोग बोलना बंद कर देंगे।
2: बहुत ही उत्तम विचार है आपके कि लोग बोलते रहते हैं लेकिन हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि ठहरो मत, आगे बढ़ते रहो। हमेशा वक्त सही वक्त पर सबकी असलियत बता देता है और हमारी मेहनत जो है ये भी वक्त का इंतजार करती है। और जब मेहनत आप दिल से करते हैं, शुरुआत दिल से होती है, तो सफलता तो जरूर मिलती है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे, आपके बारे में जानकर सुचि जी। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी कार्य कर रही हैं, जो भी आप अचार मटरी गुना जो भी बनाती हैं, ये जो है ये आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाए और आपका जो सपना है कि आप और महिलाओं को भी इस काबिल बना पाए कि वे आर्थिक रूप से सबल हो जाएं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां जो हैं एक सकारात्मक सोच के साथ आपके साथ जरूर जुड़ेंगी और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त करेंगी। धन्यवाद आपका आप कार्यक्रम में।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को कार्यक्रम में जोड़ने के लिए।
3: सखियो, आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था रसोई से व्यवसाय तक। और सखियो, सुचि मुंद्रा जी की कहानी सिर्फ रसोई तक की नहीं थी, सोच की थी। सफर सिर्फ कमाई का नहीं था बल्कि बढ़ते आत्मविश्वास का था। इसलिए अपने सपनों को टालिए मत, उन्हें एक मौका दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी।

रिश्ते धागों जैसे होते हैं, जोर से खींचो तो टूट जाते हैं और अगर प्यार से थाम लो तो उम्र भर साथ निभाते हैं। सखियों, आज हम मना रहे हैं विश्व अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। सखियों, अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि माता पिता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे अपना पूरा जीवन बच्चों के नाम कर देते हैं और माता पिता अपनी इच्छाएं छोड़ सकते हैं पर बच्चों के सपने टूटते हुए वो कभी नहीं देख सकते। पर दुख की बात यह है सखियों कि बुढ़ापे में वही माता पिता अपने बच्चों से बातें करने को तरस जाते हैं। सखियों, आप एक माँ हैं तो आप अपने बच्चों के लिए दूध का महत्व भी अच्छे से समझती होंगी। कहते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह उसे पोषण के साथ साथ प्यार, सुरक्षा और अपनापन भी देती है। आज हमारे बच्चे जो हैं ये मदर्स डे, फादर्स डे पर पोस्ट तो डाल देते हैं लेकिन दो मिनट उनके साथ बैठकर बातें करने का समय नहीं निकाल पाते। सखियों, विश्व दुग्ध दिवस के दिन देश के उन किसानों का भी धन्यवाद करना चाहिए जो लगातार देश के हर कोने तक दूध पहुंचाते हैं। दूध जो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए आवश्यक है। सखियों, जहां दूध जो है ये शरीर को पोषण देता है, वहीं जो संवाद है ये हमारे मन को पोषण देता है और हमारे रिश्तों को पोषण देता है। इसलिए आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि बिना संवाद के रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, वहीं एक अच्छा संवाद वक्ता व्यवसाय में भी नाम कमा सकता है। और अब समय है आपको जानकारी देने का। यदि आपके बच्चों में है कोई हुनर या उन्होंने किया है कोई वीरता का कार्य, तो उन बच्चों को प्राप्त हो सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। वो कहते हैं ना कि उम्र छोटी हो सकती है पर हौसले जो है ये कभी छोटे नहीं होते। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन सितारों को दिया जाता है जिनकी चमक से पूरा आसमान रोशन होता है। किसी ने किताबों में कमाल कर दिया होगा तो किसी ने खेल में और किसी ने समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर दिया होगा। अब ये पुरस्कार किसे प्राप्त होगा, तो जो कि खेल और संस्कृति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें प्राप्त हो सकता है। नवाचार यानी इनोवेशन, जिसे हम आविष्कार कहते हैं, अगर किसी ने आविष्कार किया है तो ये उसे भी प्राप्त होगा। शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भी ये पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। खेल और सामाजिक सेवा में अगर आपका प्रदर्शन बेहतर है तो भी आपको यह पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। और अगर आपने कोई बहादुरी का कार्य किया है, आपने किसी की जान बचाई है, तब भी आपको यह पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। पात्रता है इसकी कि 5 से 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उपलब्धि जो है वो हाल ही के 2 वर्षों में होनी चाहिए। अब मिलता क्या है इस पुरस्कार के दौरान, एक तो मेडल मिलता है आपको, आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और नकद राशि जो कि 1,00,000 तक हो सकती है ये प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। सखियों, नन्हे कदमों में भी ताकत होती है, छोटे सपनों में भी आहट होती है। जो ठान ले कुछ कर दिखाने की, उनकी हर एक कोशिश इबादत होती है। आपको हमारा कार्यक्रम सखियों कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके पत्र जो हैं ये हमें प्रेरणा देते हैं और हमें हर बार कुछ नया करने की सोचने के अवसर देते हैं। आप याद रखिएगा कि हमेशा हमारे बच्चे जो क्रिएटिविटी करते हैं ना, जो नए नए आविष्कार करते हैं, छोटी छोटी खोजें उनकी, उन्हें कहां तक ले जा सकती हैं, उन्हें उड़ान का एक नया आकाश दें और उनमें मदद करें। और आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं 9530012020। अच्छा, आप जब हमें संदेश भेजेंगी तो आप हमें ईमेल पर भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है enjoyair@gmail.com। सखियों, संदेशों के माध्यम से आपके जो सवाल हैं या जवाब हैं वो हम तक पहुंचते रहेंगे। रास्ते कठिन हो तो हौसला बढ़ाइए, सपने बड़े हों तो कदम बढ़ाइए। आप सिर्फ घर की पहचान नहीं है, समाज की नई उड़ान है। इसी विश्वास, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा के साथ अब दीजिए अपनी सखी तेज मोहन को अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 10 बजने को हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं

0: बम्बई थी
1: जी बिल्कुल,
0: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
1: जी,
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: अच्छा जी।
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
1: जी,
0: रावल जी।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा।
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन तो से अब, सन की बात है और किस फिल्म के लिए
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए, उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार,
1: हेमंत कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई, जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है, तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी,
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही।

0: ही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: जी,
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी, और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी होगी।
1: हाँ।
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू
1: जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा। सब
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं
1: जी।
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी।
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संबंध
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
0: पानी बन के रही। हाँ, एक्चुअली वो भी आग थी। लेकिन वो पानी बन के रही
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो

0: उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई, नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ, ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया
1: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रहीं, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति

0: जी बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक मतलब कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। हाँ। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है,
1: हाँ,
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ। और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई।
0: हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ, जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
0: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी,
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
0: बहुत खूब।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
0: जी,
1: ये यही कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त, लिखी
0: उसी दौरान, उनके भीतर ये अंकुर पैदा
1: अंकुर
0: हुआ
1: पैदा
0: और वहां से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी। तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे।

0: को अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत।
0: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो

0: जर्मन हो या जापानी,
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
0: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
0: सही बात
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों की भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो पूरी
1: गाना
0: नहीं होती।
1: जी बचता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते

0: रहते थे, तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
1: जी।
0: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी,
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
1: जी।
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है,
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं,
1: बिल्कुल। वो
0: एक छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
1: दर्पण में
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज है उनके पास, हाँ, आज भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए,
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: में आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा लेते
1: कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ
1: लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले।

फिल्म सावी का ये गाना आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में रश्मि विराग के बोल थे और जावेद मोहसिन का संगीत था। और अब सुनवाते हैं मिताली सिंह का गाया हुआ ये गाना माधोलाल की वॉकिंग फिल्म से। सानिया असलम के बोल हैं और नायाब राजा का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम राजकुमार रिजवी की आवाज में। बेनी सतमकर का संगीत है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मिताली सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गजल राजकुमार रिज्वी की आवाज में।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया हुआ ये गाना।

कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ ही अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। रंग

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं।

0: काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
0: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब आ रही है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का

0: खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहाँ हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
1: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं?
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित

0: आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी।

0: और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
1: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
0: जी,
1: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
0: जी,
1: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
0: जी।
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
0: जी।
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
0: जी,
1: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
0: जी,
1: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
0: जी,
1: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
0: जी।
1: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
0: जी।
1: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
0: जी जी,
1: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
0: बिल्कुल
1: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
0: जी,
1: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
0: जी।
1: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
0: जी।
1: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
0: जी।
1: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
0: जी।
1: तो ये भी एक हमारी पहल है
0: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
1: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
0: जी।
1: और एक और सरल उपाय है
0: जी,
1: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
0: जी।
1: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और CIET वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
0: जी।
1: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल

0: चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी,
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। दोपहर के 12:30 बजने को हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है गणेश का।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा

देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा बना चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा।

0: पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख।
1: सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गाना आपने सुना फिल्म फरियाद से। बोल केदार शर्मा के थे और संगीत था स्नेहल भाटकर का। और अब आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव परमन का।

यादों के महफिल कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल सबा अफगानी के हैं और संगीत है जानी बाबू कव्वाल का।

0: यह चैनल है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्तियां की है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति शनिवार को 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई जाने का कार्यक्रम है। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल

0: होने की अपील की है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इनकी कीमतें चार प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.5 रुपए तक बढ़ गई है। 19 किलोग्राम वाले ये सिलेंडर होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में उपयोग लिए जाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के दाम अब 3,113.50 रुपए होंगे। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। जून महीने को राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। मॉनसून पूर्व मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे महीने मच्छरों की रोकथाम और जन जागरूकता के विशेष कार्यक्रम होंगे। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर सोर्स रिडक्शन कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एंटी लार्वा उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में साफ पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियानों से अब तक 15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से चलाए गए 6 विशेष अभियानों से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके तहत 3,000 से ज्यादा हैंडपंपों की मरम्मत और 1,600 से अधिक पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। इसमें विशेष टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। साथ ही विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 325 अवैध जल कनेक्शन हटाए। भरतपुर में आज दुपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस ने भामाशाहों के सहयोग से ये वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता बताई गई, साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा। तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह, क्या बात। एक और श्रोता कह रही है कि कहीं पढ़ा था बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए, इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियां यहाँ साझा कर रही हूँ। क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी, बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम त्याग

और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और हाँ आवाजें किनकी हैं।

सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाजें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और

आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बढ़ता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे, पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को खास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुरहित के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं और माता पिता से ज्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से। संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नजारा देखने मिला, तब से पंछी बनू उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहां कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथ ही मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि जिंदगी का सब कुछ सीखने सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता है। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। पर अब एक गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी, अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए जरूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है, मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमजोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी

0: पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी। और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। उनकी जरा भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियां तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था। बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुंह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है। और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे। उनका रौब घर में था। हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे। डांटने पर कभी भी उलटकर जवाब नहीं देते थे। माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशव काल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहां चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और एक या दो बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत भावुक विषय पर इबारत है। हाँ है, तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं। बताइए कि आवाज किनकी है और संगीतकार कौन है।
1: हंसना सीखो हंसते हंसते।

जवाब आया हमारे श्रोताओं ने बताया। अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब भी लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना, कुछ अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि पांचवी कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो खराब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहां बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का नजरिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब

दिन रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ खजाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है। और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें जरूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि मार के डर से ही डरे, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन

में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खा कर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें। मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज़, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊँगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है माँ का प्यार और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाजों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वॉल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे में भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है, कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं, ये भी जीवन का आनंद है। छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए, झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहां माँ के आंचल की छांव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मजा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी।

0: फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और सही जवाब आ गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संदेश मिला है कि हमारे श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताजा हुई मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर, हमारे एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम उनसे हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था। वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।
1: दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए। माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था। बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई खजाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए। सारी खुशियां मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आज है विश्व दूध दिवस। दूध की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दूध के विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली शरण गुप्त की रचना याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। भले ही साथियों आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, लेकिन ये भी तो सच है कि नारी हर दुख हर दर्द को पीकर पूरे घर को समृद्ध करती है। अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर एक माँ अपने संतान को पिलाती है, उसे जीवन दान देती है।

हालांकि 1 जून यानी कि आज के दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला दी थी अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से, यानी कि दुग्ध विकास मिशन के माध्यम से। इस क्रांति ने केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं, बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और साथ ही साथ लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी

आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए दिन में एक गिलास दूध भी किसी विलास से कम नहीं। सरकार की तरफ से कुपोषण के खिलाफ कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे आखिर कौन सा कदम सफल हो सकता है। हम जागरूक रहें और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बेहतर योगदान दें। हमारे लिए जितना भी संभव हो हम उन कुपोषित बच्चों को दूध पिलाकर उनका कुपोषण दूर करने में अपना योगदान दें।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों

0: का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायक के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, धरती के कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग

0: और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
2: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रूपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रूपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रूपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
4: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं।

0: हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज, साथ में मोहम्मद रफी बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों में शैलेंद्र की रचना थी और सल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना। सुमन कल्याणपुर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।

0: आँखों की बुझा लो तो चले जाएगा, कह दिए हो
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी है मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई, अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छी गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम

0: पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती है जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं
1: जी।
0: और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए, वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याण को हमने खो दिया है, उनके गायकी जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है,
0: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता
0: है
1: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया,
0: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला है वो थी, और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
0: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है, आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है, और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी
1: बिल्कुल। और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियाँ और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मुंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी

0: नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थी। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु के खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे।

0: कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वो तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
1: अच्छा,
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत्ते रे लालची।
2: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करो, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा ना रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन

0: गुण से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: बिल्कुल मिलने वाले हैं। और
5: हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
6: और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स विचार।

0: शुभकामनाएं
1: शुभकामनाएं भेजेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
0: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें, और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं, और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर,
1: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
0: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और,
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाएं, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना,
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना, तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं
0: ये
1: नहीं।
0: वो दिन नहीं है बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है, और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव हैं जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो अगर बच्चे की देखभाल करते थे लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी है, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे, तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं चलता था
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे, कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान की जाने। और होता था कि जब माता पिता आते तो बड़े परेशान आते थे क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
1: और देखिये हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है, एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां से

0: संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी बात,
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच

0: चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, आई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन लें
0: जी।

0: हाँ,
1: तो देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबियत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है। आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे

0: आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी न किसी रूप में आप बच्चों को दिला सकते हैं।
1: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे है ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मुंगोड़ी से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप,
0: आलू चाहिए आधा कप
1: आलू, हाँ। 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मुंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें। मटर भूने, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें।

0: और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर ले। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मुंगौड़ी डालें। सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गरम मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और नमूना तैयार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
0: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
1: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती है सखिया, वैसे तो बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, छोटी चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें। बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गरम गरम तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
0: गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब
3: हाँ।
0: जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है, और वो क्यों होती है, क्योंकि आने वाले दांत जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी।

0: की जाती है।
1: अच्छा,
0: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है।
1: जी
0: ठीक है, तो इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
1: पेट में
0: जाएंगे, तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशंस होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी,
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से।
1: छोटे बच्चों के लिए
0: जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं, फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 ईयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल,
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अभी मुद्दा निकला ही है, तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आप

0: ने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजिली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा।
1: हाँ।
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है।
1: Yes.
0: बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं।
0: लेकिन नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली,
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है, असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
0: है,
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात है,
1: सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल

0: बैक्टीरियाज है, उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है, दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं, हाँ उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है, मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है, नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए, इसके लिए

0: मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस,
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस,
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब

0: आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रिलिक भर के दे देते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
1: अरे बाप रे,
0: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
1: ओहो।
0: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
1: बिल्कुल।
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहाँ पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
0: एग्जैक्टली।
1: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
1: वही मैं जानना चाहता हूँ,
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
1: ये बहुत ज्यादा है।
0: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
1: यस।
0: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए, और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा
1: बिना
0: रहा
1: भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं।

0: तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके,
0: डेंटिस्ट
1: के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए

0: ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं, तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन

0: कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
1: ओके okay.
0: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
1: फ्लॉस के लिए वो
0: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है,
1: ओके
0: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
1: जी,
0: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
1: हाँ
0: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है,
1: ओके
0: सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
0: हाँ जी
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा, तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है, ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है, आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है, वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
1: यस
0: तब दांत हिलेगा,
1: तो हड्डी मामला है।
0: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है, पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में

0: सलाइवरी सिक्रीशन कम होता है तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस पे हो तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: ये थोड़ा विजिबल साइन
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो
1: लोग आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता, और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं, फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू, स्मोकिंग
0: और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीख, क्योंकि आप
0: करना सीख।
1: एग्जैक्टली, क्या बात है, सुनते
2: हैं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए हैं, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन
0: लेवल में लाए जाते हैं।
1: एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, ये आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है, एक स्क्रू जैसी चीज होती है। एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2-3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे, ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी

0: जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है। डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है।
0: वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते 110 से 115 तक।
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है।
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: Exactly.
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज रहे हैं और अब हमारे स्थानीय कार्यक्रम प्रारंभ होने को है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: ये खिंची खिंची सी शाम और ये उलझे उलझे से ख्याल, कैसे बताऊं तुम्हें क्या है मेरा हाल। और फिलहाल आपके मन को खुशहाल करने के लिए लौट आई हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त लक्षिता।
1: और मैं हूं दोस्तों आपके साथ खुशी। और दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां होता है एक अलग एहसास जो होता है बेहद खास, क्योंकि इस कार्यक्रम की नींव है आपका विश्वास।
0: तो दोस्तों इसी विश्वास को कायम रखते हुए ले चलते हैं आप सभी को एक नायाब खुशनुमा सफर पर,
1: जहां होंगी यूजफुल जानकारी, उसमें होगा एंटरटेनमेंट का तड़का और होंगी चटपटी बातें, क्योंकि साथ है खुशी और लक्षिता।
0: तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस खूबसूरत सी शाम का आगाज, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के प्यारे से मौसम के बारे में। तो खुशी बताओ कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज।
1: बिल्कुल लक्षिता, ये जो मौसम है ना ये मुझे बहुत पसंद है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और धूप भी नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने जाना चाहिए।
0: और इतने दिनों बाद इतना प्यारा मौसम हमें देखने को मिल रहा है, तो दिल को एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।
1: एग्जैक्टली लक्षिता,
0: है ना? और ऐसे मौसम में तो घूमने का काफी मन करता है, तो बताओ कुछ प्लान बन रहा है तुम्हारा घूमने का?
1: फिलहाल तो यही प्लान है कि हम हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों से ना ढेर सारी बातें करें, बाकी का उसके बाद सोचेंगे क्या करना है।
0: ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आइए दोस्तों ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में, सुनाते हैं आज की शाम का ये पहला गीत जो आपके मन को जरूर खुशहाल कर देगा।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में, जहां आज आपका साथ दे रही हैं आपकी दो रेडियो दोस्त। मैं आपकी रेडियो दोस्त लक्षता,
1: और मैं हूं खुशी।
0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गाने के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के संवाद के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो कभी बोर ना हो और आपके हर सवाल का जवाब चुटकियों में दे दे, आपको नए आइडियाज दे दे और 24 घंटे तक आपके लिए अवेलेबल रहे, तो आपको कैसा लगेगा?
1: लक्षिता, कहीं तुम AI के बारे में तो बात नहीं कर रही हो?
0: बिल्कुल सही समझा तुमने खुशी, मैं AI की ही बात कर रही हूँ।
1: लक्षिता, आजकल AI ने ना लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। मतलब कुछ ही सेकंड्स में हमें किसी भी सवाल का जवाब मिल जाता है।
0: लेकिन क्या तुम्हें पता है खुशी, कुछ लोग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं AI उनकी जॉब्स ना छीन ले या फिर मशीन्स इंसानों की जगह ना ले ले। मतलब तुम खुद बताओ, क्या सच में AI इतनी डराने वाली चीज है?
1: लक्षिता, मुझे लगता है कि AI जो है डरने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है कि उससे डरा जाए। हाँ। बल्कि उसने तो हमारी डेली लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और हमारी लाइफ को ना इजी बनाया है। और रही बात जॉब्स की ना, तो नोबडी कैन टेक प्लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसान की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने खुशी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी लोगों को यही लगा था कि मैथ्स अब सीखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ना?
1: बिल्कुल लक्षिता, और तुम्हें पता है जब इंटरनेट नया नया आया था तब भी लोगों के मन में काफी सवाल थे। लेकिन अब देखो, अब ये जो टेक्निक है ना, ये इसने हमारे काम को कितना आसान बनाया है। और कोई भी काम आजकल हमारा इंटरनेट के बिना तो हो ही नहीं सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने दोस्तों, AI भी कुछ ऐसा ही है। ये हमारी इमेजिनेशन का ऑप्शन नहीं बल्कि उसका पार्टनर है। जैसे अगर आप एक राइटर हैं तो AI आपको नए आइडियाज दे सकता है, आपको नए थॉट्स दे सकता है ताकि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें।
1: और दोस्तों, वहीं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो AI पढ़ाई को आसान बना सकता है। फिर चाहे आप कोई आर्टिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर, ये आपको हर वे में हेल्प कर सकता है।
0: देखिए दोस्तों, आर्टिस्ट को क्रिएशन ऑफ आर्ट में मदद करके कर सकता है ये हेल्प। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस आइडियाज देकर स्कीम

0: आइडियाज़ देकर, और वो भी इन अ बेटर वे, ताकि आप हाई लेवल पर मूव कर सकें।
1: लेकिन दोस्तों, ये सब दिमाग के काम है, जहाँ कुछ महसूस करने की या समझने की एआई को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बस नॉलेज शेयर करता है।
0: और इसका सीधा रीजन ये है कि एआई सोच नहीं सकता, भावनाएं महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब इंसान की ताकत है और ये इंसान से कोई नहीं छीन सकता।
1: बिल्कुल लक्षिता, एआई ना सिर्फ एक डिवाइस है, या कह सकते हैं कि एक टूल है, और किसी भी डिवाइस की कीमत इस बात से तय होती है कि उसका यूज कैसे किया जा रहा है।
0: पॉइंट तो सही है। तो दोस्तों, डर की जगह जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी अपनाओ, डाउट्स की जगह सीखने की इच्छा रखो, कोशिश करो कि आप नया नया सीखें, आपको चीजें समझ आए, क्योंकि डरने से तो कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, जो डर गया वो
1: मर गया
0: नहीं, घर गया। और दोस्तों, एआई को अपना कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि अपना पार्टनर बनाओ, उससे अपनी हेल्प लो, ताकि आपका काम ईजी हो।
1: क्योंकि सच तो ये है कि फ्यूचर ब्राइट उन्हीं का होगा जो टेक्निक से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनी क्रिएटिविटी को और निखारेंगे।
0: एंड आई होप हमारी ये बातें सुनकर हमारे जो दोस्त हैं वो इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, एआई से डरिए नहीं, बल्कि उसे अपनी इमेजिनेशन को पंख देने के लिए यूज करिए। कलम बदली, टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर और इंटरनेट भी आया, लेकिन क्रिएटिविटी की असली ताकत हमेशा इंसान ही रहा और आगे भी रहेगा।
1: दोस्तों, एआई भी उसी सफर का एक नया चैप्टर है, इसे डर के नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और विजडम के साथ अपनाएं।
0: देखिए दोस्तों, ये एआई आपकी मदद का एक जरिया है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में यूज करते हैं। अगर आप इसे गलत वे में यूज करते हैं तो आपकी गलती है, अगर आप इसे सही वे में यूज करते हैं तो ये आपकी अच्छा ही है, डिपेंड आप पे करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे शाम में और सुनाते हैं आज की शाम का ये
1: दूसरा गाना।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और आप बने रहिए हमारे साथ शाम के 6 बजे तक।
1: खुशी, तुम्हें कभी अपने बचपन की याद आती है?
0: रक्षिता, बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ अपने बचपन को।
1: अच्छा, सबसे ज्यादा क्या मिस करती हूँ बचपन में?
0: सबसे ज्यादा मैं मिस करती हूँ ये जो गर्मी वाली जो छुट्टियाँ होती है ना, जो समर वेकेशन समय मिलती थी उस टाइम पे, उन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ।
1: बिल्कुल, मैं भी सेम। हम लोग पता है इतना खेला करते थे, हम घर नहीं जाते थे दिन में, हम इतना खेलते थे, हम कुछ भी खेलते थे, कुछ नहीं तो हम रैंप पर ही फिसल रहे हैं।
0: हम भी बिल्कुल, हम भी ऐसा ही करते थे, कुछ नहीं मिलता था ना हम मतलब पार्क जाके बोर हो जाते थे तो हम घर के जो हमारे रैंप होते हैं उसी पे फिसल के खुश हुआ करते थे।
1: जैसे कोई प्लांट्स हैं तो वो पत्तों की कुछ डिशेस बना रहे हैं, मास्टर शेफ खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल, और जो सबसे फेमस गेम है घर घर, वो तो तुमको याद ही होगा,
1: हर बच्चे का फेवरेट। तो बचपन काफी याद आता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आजकल अगर तुमने नोटिस किया हो तो आजकल पहले जैसी बात नहीं रही।
0: बिल्कुल,
1: कहीं भी बच्चे खेलते हुए हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि गर्मी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलते ही बीमार होने का खतरा बना हुआ है।
0: बिल्कुल, और एक बात हम सबने फील भी करी है कि गर्मी अब ना पहले जैसी नहीं रही।
1: वही वाली चीज। बिल्कुल, तुमने मेरे मन की बात बोली है क्योंकि मैं अभी इसी चीज़ को अच्छे से बोलना चाह रही थी। तुमने मई जून की जो गर्मी पहले हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी कि हम बाहर चले भी जाया करते थे, आ भी जाया करते थे, लेकिन अब शायद थोड़ी वो गर्मी अनकंफर्टेबल सी लगने लग गई है। अब हम सर्वाइव करते हैं उस सिचुएशन में और ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलते ही सूरज दादा थोड़े से एक्स्ट्रा एंग्री हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा गुस्सा है।
0: बिल्कुल लक्षिता, पहले कैसे बच्चे धूप में भी गली मोहल्लों में खेला करते थे और अब तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि आजकल वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, धूप लग जाती है और मतलब तबीयत बिगड़ जाती है। आजकल थोड़ा सा भी बाहर निकले नहीं कि तबीयत खराब हो गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब सवाल ये है खुशी कि ये सब हो क्या रहा है?
0: सच तो ये लक्षिता कि कहीं ना हम ही इसके जिम्मेदार है।
1: ये भी तुमने सही कहा, क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं और पक्के निर्माण वाले शहर ऐसे फैल रहे हैं जैसे हर खाली जगह को बस ढक देना है, कुछ भी खुला नहीं छोड़ना।
0: बिल्कुल, और इसका रिजल्ट है हीट बढ़ना, मौसम बदलना, और इन सब का ना हमारी डेली लाइफ पे

0: बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है।
1: अब ये सिर्फ गर्मी लग रही है ये वाली बात नहीं रही है, लोगों को लू लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी और बिजली का लोड भी हर साल बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है और हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, उन पर पड़ता है।
0: लेकिन इन सब के बाद भी अच्छी बात यह है लक्षिता कि ये जो चीजें हैं ना, ये चेंज की जा सकती हैं।
1: बस जरूरत है छोटे छोटे स्टेप्स लेने की, जैसे पेड़ लगाना, पानी वेस्ट ना करना। अक्सर क्या होता है लोगों को, जब भी कहते हैं ना, जब भी हमारे पास कोई चीज होती है तो हमें कद्र नहीं होती। अब हम बहुत सी बातें ऐसी सुनते हैं जहाँ पानी की कितनी किल्लत होती है, कितनी कमी होती है, लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है कुओं से पानी लाने के लिए। तो ये वाला स्ट्रगल हम लोग नहीं समझ सकते क्योंकि हमें घर बैठे मिल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हमें इस चीज की कद्र करनी आनी चाहिए ताकि हम वाटर को सेव करें हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए।
0: बिल्कुल। और भी हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि अभी गर्मी है तो क्या करते हैं हम बहुत बार ना एसी को ऑन ही छोड़ जाते हैं। हम बैठे नहीं है रूम में लेकिन हम उसे ऑन छोड़ जाएंगे और वो चलता ही रहेगा। और तुम्हें पता है ना, एसी से भी जो एनवायरमेंट है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं, उससे कितना पोल्यूशन बढ़ता है। और तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम फैंस को, एसी को ना बंद करके जाए अगर हमें जरूरत नहीं। और लाइट से भी हीट काफी फैलती है तो हम लाइट्स भी ऑफ रखें। और जो आसपास का हमारा ग्रीन स्पेस है ना, उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए।
1: एक्चुअली यही तो लापरवाही का नतीजा है ना, कि हम लापरवाह रहते हैं, ध्यान नहीं रखते, और यही हमारी गलतियां हैं। और देखिए, जरूरी नहीं कि हर कोई सही हो, हर किसी को सीखने की जरूरत है। अगर आप आज से शुरू करेंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, ये सीधी सी बात है। तो दोस्तों, आप भी इन सब स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करिए। आपके बर्थडे पे आप कोई पौधा लगा दें, आपकी एनिवर्सरीज पे, और भी काफी सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डेज आपकी लाइफ में होते हैं जब कभी आप सोच कर बस एक पौधा लगा दें, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है
0: एक्चुअली। और ऐसा ही नहीं कि आप उसे सिर्फ लगा दें, आप टाइम टू टाइम जाके उसे चेक भी करें, उसको पानी दें, देखें कि वो कैसा है, वो कहीं सूख तो नहीं गया।
1: आपको फील होगा कि एक जान आपके सामने कहीं ना कहीं बड़ी हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हम ये भी स्टेप ले सकते हैं खुशी कि हम कभी भी किसी का बर्थडे हो, हम गिफ्ट्स देते हैं तो हम गिफ्ट में पौधा दे दें, कोई प्यारा सा, कोई अच्छा सा।
0: बिल्कुल। आई थिंक, मुझे लगता है उससे अच्छा वैल्यूएबल गिफ्ट कोई हो भी नहीं सकता।
1: ये अच्छा एक इनिशिएटिव होगा जो लोगों को अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में। कई बार हम कहीं जाते हैं, जैसे कॉलेजेस में मैंने अक्सर देखा है, जो गेस्ट आते हैं उन्हें पौधे ही देते हैं। तो ये काफी अच्छा स्टेप है, तो हमें भी फॉलो करना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि सच यही है कि एनवायरनमेंट कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी ही लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा है, एक खूबसूरत पार्ट है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब हेल्दी रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो ज़रूरी है कि हम अपने आसपास को क्लीन रखें, अपने आसपास की हवा को क्लीन रखें। हम नॉइस पोल्यूशन भी बहुत करते हैं, हम हवा में भी बहुत कुछ गंदी चीज़ें जो होती हैं, बहुत पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी आनी चाहिए।
0: बिल्कुल लक्षिता, तुमने बिल्कुल सही बोला। और अगर हमने इसको इग्नोर किया ना, तो इम्पैक्ट भी हमें ही फील होगा, तो हमें इन सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स बी अ लिटिल नाउ अवेयर अबाउट इट
1: एंड मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट, क्योंकि जब तक हम इसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक हमें नहीं लगेगा कि हमें कुछ करना है।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप अपनी सोसाइटी, अपने शहर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टेप लेंगे तो अपने आप देश धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड उस चीज़ को फॉलो करेगा। तो यही संदेश हम आपको देना चाहते हैं कि इस बढ़ती गर्मी में अपना ख्याल रखें और जहाँ इम्पोर्टेंट हो वहीं जाएं। लेकिन फिलहाल मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और ठंडी ठंडी हवाएं, और आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। इसको देखते हुए दिल भी खुश हो जाता है कि हाँ, ठंडी हवाएं चल रही है तो बाहर निकलने में उतना आलस नहीं आता जितना कुछ दिन पहले आ रहा था।
0: बिल्कुल।
1: क्या कहती हूँ खुशी?
0: बिल्कुल सही बोला तुमने लक्षिता, आज का मौसम तो कुछ अलग ही है। और इतनी गर्मी में ना ये ठंडक मतलब दिल तक पहुंच रही है कि हाँ, अच्छा लग रहा है आज सच में। थोड़ा तो थोड़ा ही सही, पर थोड़ा छुटकारा मिला उस गर्मी से हमको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो चलिए सुनाते हैं दोस्तों को एक और प्यारा सा गाना, और इस गाने के जरिए कहीं ना कहीं हम ये बता देंगे कि हमें कैसा फील हो रहा है इतने दिनों बाद। तो दोस्तों, ये गाना है आपके लिए, तो अपनी चाय की प्याली के साथ इस गाने का मजा लीजिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में वापस।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंच गए हैं सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर, और आज हम बात करने वाले हैं विश्व दुग्ध दिवस के बारे में।
1: दोस्तों, आज हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस। दोस्तों, दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक दूध हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे पर, जो कि हर साल 1 जून को मनाया जाता है।
1: दोस्तों, इसीलिए दुनिया भर में दुग्ध के महत्व को उजागर करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
0: दोस्तों, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के विकास और हड्डियों की मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है?
1: जी हाँ दोस्तों, ये हमारे देश के लाखों किसानों और पशुपालकों की मेहनत का परिणाम है, जो दिन रात परिश्रम करके हमारे घरों तक दूध पहुंचाते हैं।
0: दूध केवल पोषण ही नहीं देता, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उद्योग रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
1: साथ ही में दोस्तों, दूध से बनने वाली दही, मक्खन, घी, पनीर और मिठाइयाँ हमारे खाने को और भी न्यूट्रिशियस और टेस्टी बनाती है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन ने दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाया था?
1: और इस व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन, जिनके प्रयासों ने भारत को मिल्क प्रोडक्शन में नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया था।
0: विश्व दुग्ध दिवस हमें केवल दूध के फायदे ही नहीं बताता, बल्कि ये भी सिखाता है कि बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: साथ ही ये दिन हमें उन लोगों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का मौका देता है, जिनकी मेहनत से ये पौष्टिक आहार हम लोगों तक पहुँचता है।
0: तो आइए दोस्तों, इस अवसर पर हम सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और पौष्टिक आहार अपनाने का संकल्प लेते हैं,
1: और साथ ही दूध तथा दूध से बने प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी डेली लाइफ में बैलेंस डाइट को जगह दें।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: तो चलिए दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं हमारे करंट अफेयर्स की तरफ।
1: भारत और ओमान CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट लागू हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय सेना अग्निवीर CEE 2026 परीक्षा देश भर में शुरू हुई, जो 15 जून तक चलेगी।
1: मौसम विभाग ने 2026 में 11 वर्षों का सबसे कमजोर मानसून होने की आशंका जताई, जिससे

0: कृषि और महंगाई पर असर पड़ सकता है।
1: साथ ही दोस्तों, भारत ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के लिए नया आधार वर्ष और विस्तृत कवरेज लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है।
0: दोस्तों, 31 मई 2026 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस वर्ष का फोकस युवाओं को तंबाकू और निकोटीन उत्पादनों से बचाना रहा।

0: इस वर्ष का फोकस सेवाओं को तंबाकू और निकोटीन उत्पादनों से बचाना रहा।
1: वहीं दोस्तों 30 मई 2026 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इसी के साथ दोस्तों करंट अफेयर्स में इतना ही।

0: मेरे मन में एक बात आई है और वो मैं तुमसे भी साझा करना चाहूंगी.
1: बिल्कुल अक्षता.
0: कि हम कई बार उन रिश्तों के बारे में जरूर बात कर लेते हैं जो हमने खुद बनाए हैं, जो रिश्ते होते हैं दोस्ती के, अपनेपन के, व्यवहार के, लेकिन हम कभी उन रिश्तों के बारे में बात नहीं करते जो हमें भगवान ने खुद बना कर दिए हैं. और उन सब में सबसे बड़ा रिश्ता आता है माता पिता का, हमारे मम्मी पापा का, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमारे लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है.
1: बिल्कुल अक्षता. और कभी कभी ना हम उस चीज को बहुत कैजुअली भी ले लेते हैं, इतना वैल्यू नहीं करते हैं ना,
0: क्योंकि हमें लगता है कि ये तो ये करेंगे ही,
1: इनका काम है ये करना,
0: पर ये गलत है.
1: Exactly.
0: क्योंकि मम्मी पापा जो प्यार हमसे करते हैं बिना किसी कह सकते हैं किसी
1: स्वार्थ
0: के, निस्वार्थ भाव से,
1: बिल्कुल.
0: जो हमसे प्रेम करता है इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में, वो सिर्फ हमारे मम्मी पापा होते हैं. और आज इस टॉपिक के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है.
1: बिल्कुल. तो दोस्तों, आज हम मना रहे हैं एक और महत्वपूर्ण दिवस जो है हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल लोगों को समर्पित.
0: बिल्कुल सही कहा. आज हम मना रहे हैं दोस्तों वैश्विक अभिभावक दिवस, जिसे हर साल 1 जून को मनाया जाता है.
1: बिल्कुल दोस्तों, माता पिता ही ना हमारे पहले शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और सबसे बड़े शुभ चिंतक भी होते हैं. उनका प्यार, त्याग और समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.
0: कहते हैं ना, हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है.
1: Exactly,
0: जहाँ से हम बोलना सीखते हैं. शायद हम पहले माँ बोलते हैं या पापा बोलते हैं, लेकिन पहला वर्ड हमारा वही होता है.
1: बिल्कुल.
0: मम्मी पापा हमारी जिंदगी होते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ मतभेद हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट्स नहीं समझ पाते और कभी कभी पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे नहीं समझ पाते. लेकिन इन चीजों को साइड में रखकर हम जो सबसे ज्यादा अनंत प्रेम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा से करते हैं. दोस्तों, वैश्विक अभिभावक दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी. इसका मोटिव दुनिया भर के माता पिता के योगदान को सम्मान देना और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना है.
1: दोस्तों, एक बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका केवल उसकी जरूरतों को पूरे करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व, संस्कार और भविष्य का निर्माण भी करते हैं.
0: तुमने नोटिस किया है कभी खुशी कि चाहे कितना भी हमारे पेरेंट्स हमें डांट लें किसी भी चीज को लेकर, लेकिन कभी कोई और हमसे कुछ कह दे तो फिर
1: वो बिल्कुल सहते नहीं है. सही, ये तो बिल्कुल सही बात है. और कभी कभी लक्ष्य था ऐसा भी होता है ना कि हम ना गुस्से में आके उनको भी बहुत कुछ कह देते हैं. उनको कुछ, हमें गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन किसी और के ऊपर है, लेकिन हम निकाल उन पे देते हैं कि मम्मी आपने ऐसा किया, पापा आप ऐसे करते हो, लेकिन स्टिल वो हमें उतना ही प्यार करते हैं.
0: एट द एंड ऑफ द डे वो हमें माफ कर देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और यही प्यार होता है. जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको माफ कर देते हैं और आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकते.
1: बिल्कुल.
0: और यही प्यार की जो सही डेफिनेशन है वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे लिए लागू होती है. क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वही हमसे करते हैं. दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अनेक त्याग करते हैं, जो कि मैं अभी पहले भी बोल चुकी हूँ. वो चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हों, सफल हों और एक अच्छे इंसान बने. कई बार तो अपनी खुशियों और अच्छाइयों को भी वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पीछे छोड़ देते हैं. ये भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है.
1: बिल्कुल. और आज के जो बिजी लाइफ है ना लक्षिता, तो मैं भी बोल भी रही थी ना कि हम उनकी चीजों को कैजुअल ले लेते हैं. तो हम आजकल इतना बिजी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, ठीक है, उनका काम ही है, वो करेंगे ही सही. लेकिन जो ये दिन है ना जो आज हम मना रहे हैं, तो ये दिन हमें ना एक

0: अवसर भी देता है कि हम उनके प्रति अपने सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम को ना व्यक्त कर सकें।
1: दोस्तों, हम अक्सर भूल जाते हैं कि मम्मी पापा के साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए।
0: हम
1: दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, अपने कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन सबके साथ टाइम स्पेंड कर, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा जो घर में होते हैं हम उनसे उतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते या फिर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एक बार आंखें बंद कर सोच कर देखेंगे ना कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि सबसे बड़ा सुख है मम्मी पापा से बात करना, उनकी बातें जानना, उनका एक्सपीरियंस लेना, उनकी गाइडेंस लेना। कई बार प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम डर जाते हैं कि मम्मी पापा हमें डांटेंगे, लेकिन उनके डांट के पीछे का जो प्यार होगा ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा। उनसे ज्यादा कोई नहीं चाहेगा कि आपके साथ अच्छा हो या आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो। और लोग तो मजे भी लेते हैं, लेकिन हाँ, मम्मी पापा का दर्द समझेंगे।
0: हो सकता है हमारी प्रॉब्लम्स लेके बाहर वालों के पास जाएं तो वो फायदा उठा लें, तो हमें अपने पेरेंट्स से उन चीज को शेयर करना चाहिए।
1: और मैं तो कहूंगी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबल हो अपनी चीजें शेयर करने के लिए।
0: मतलब स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, लेकिन
1: नहीं कि आप कुछ बता ही नहीं पा रहे। बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों, माता पिता केवल अपने हमारे संरक्षक ही नहीं होते, बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अगर वो भी चाहें और हम भी चाहें।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस और गाइडेंस हमें सही रास्ता दिखा सकता है। और अगर सही समय पर हम अपने मम्मी पापा को हर बात शेयर करेंगे तो हम कभी किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे ही नहीं।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने साल 2012 में ऑफिशियली 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में मान्यता दी थी।
1: दोस्तों, इस दिन का संदेश है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सहयोगी पारिवारिक वातावरण मिलना चाहिए, ताकि उसका विकास सही से हो सके। देखो, कितने लकी है ना हम, खुशी की हमारे पास मम्मी पापा, दादा दादी सब लोग हैं।
0: बिल्कुल,
1: जरा सोच कर देखो जिन लोगों के पास नहीं होते, उनको तो पता भी नहीं होता कि असली प्यार होता क्या है मम्मी पापा का। तो आज हमारे पास है, तो हमें कद्र करनी चाहिए, हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके सैक्रिफाइसेस को समझना चाहिए, उनकी हमारे लिए जो पॉजिटिवनेस है उसको समझना चाहिए।
0: हम उस चीज को बहुत बार ऐसे बाउंडेशन ले लेते हैं कि आप जाने नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं करने दे रहे हो, लेकिन उसके पीछे उनका एक केयर होती है हमारे लिए,
1: प्रोटेक्टिवनेस होती है ना, एक वो छुपी हुई होती है कहीं ना कहीं, और हमें वो समझनी चाहिए।
0: बिल्कुल अक्षरा, तुमने सही बोला। और दोस्तों, कहा भी जाता है ना कि माता पिता का प्रेम वो नींव है जिस पर एक सफल जीवन का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। इसीलिए हमें उनके सम्मान, देखभाल और भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका साथ हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। वो हमारे लिए सब करते हैं ना, हमें छोटे से बड़ा कर देते हैं। कितनी सारी चीजें वो मैनेज करते हैं, और अब धीरे धीरे जब हम बड़े हो रहे हैं तब हमें समझ आ रहा है कि क्या स्ट्रेस होता है, क्या चीजें, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी चीजें उन्होंने फेस करी होंगी।
0: और लक्षिता, पता है बदले में ना वो कुछ डिमांड भी नहीं करते। अगर हम उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बस हंस बोल लेना, वो उसी में खुश है। उनकी कोई डिमांड्स नहीं है।
1: हाँ, वो बस यही चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारी लाइफ अच्छा हो, हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारे साथ कोई कुछ बुरा ना हो। तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छे इंटेंशंस अगर कोई रखता है तो वो हमारे पेरेंट्स है हमारे लिए।
0: ऑफ कोर्स।
1: और ये सारी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार चीजें अपने मन में रख लेते हैं और कहीं ना कहीं बताना, शेयर करना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आइए इस अवसर पर हम सब अपने माता पिता को धन्यवाद कहें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हम उनके प्रेम और त्याग की कद्र करते हैं।
1: दोस्तों, मैं तो कहूंगी आज ही नहीं, हर दिन आप अपने मम्मी पापा को महसूस कराइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल हम इतना बिजी रहने लगे हैं कि फोन चलाते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो हमें हर चीज टाइमली करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक तो ऐसा हो कि टाइम निकल जाए और हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो क्या फायदा।
1: इसीलिए
0: आज जो हमारे साथ हैं, सही सलामत हैं, तो हमें बिल्कुल उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
1: ये तो दुनिया का एक कड़वा सच है कि हर वक्त तो कोई साथ नहीं रहता है ना, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस, आप कैसे इस चीज को समझते हैं, पर आशा करते हैं आपने कुछ अच्छा जाना होगा।
0: बिल्कुल दोस्तों,
1: तो चलिए आज एक प्यारा सा गाना, जो हम अक्सर नहीं बोल पाते, हमें थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है अपने पेरेंट्स को बोलने में, तो आज हम उसे इस गाने के जरिए डेडिकेट करते हैं और उनसे कह देते हैं दैट वी लव यू आर मम्मी एंड पापा।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: लक्षिता, काफी देर से ना मेरे मन में एक बात चल रही है।
1: बोलो।
0: मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है।
1: मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन। मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है।
0: ओह सेम, मुझे भी बैडमिंटन बहुत ज्यादा पसंद है।
1: किसी दिन हो जाए मैच।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वैसे तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया गेम्स वाला?
0: क्योंकि अब वक्त है हमारी स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: ओके, मतलब खेल गतिविधियाँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कुछ खेल गतिविधियाँ। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हरा कर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीता। वहीं विराट कोहली ने फाइनल में नाबाद 75 रन बनाकर जीत दिलाई है। दोस्तों 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और सीजन के सबसे बड़े सितारे बन गए।
0: दोस्तों आईपीएल के बाद भारतीय टीम का फोकस अब जून में होने वाली अफगानिस्तान सीरीज और इंडिया ए टूर्नामेंट्स पर है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के भारत में ब्रॉडकास्ट राइट सी एंटरटेनमेंट ने हासिल किए हैं। टूर्नामेंट जून में शुरू होगा।
1: वहीं दोस्तों फ्रेंच ओपन 2026 पेरिस में चल रहा है, जहां दुनिया के टॉप खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं।
0: दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी में लीग और टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों को फॉर्म लगातार चेक की जा रही है।
1: तो दोस्तों खेल गतिविधियों के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि अब समय हो रहा है धीरे धीरे आपसे विदा लेने का। तो खुशी कैसा लगा आज तुम्हें, इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई, इतनी सारी हमारी बातें हुई।
0: बिल्कुल लक्षिता, टाइम कैसे निकल गया ना कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि अभी तो हमने दोस्तों से बात करना शुरू ही किया था और अब बस हम कार्यक्रम के एंड पे पहुंच गए।
1: तो क्या कहना चाहती हो हमारे दोस्तों को तुम?
0: मैं उन्हें बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, हम आपसे मिलने दोबारा आएंगे,
1: लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। दीजिए इजाजत अपनी दोनों रेडियो दोस्त, मैं लक्षिता
0: और मैं खुशी को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा

0: तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला नगमा आइए अब हम सुनते हैं एक खास फिल्म से

दिल से फिल्म का नगमा भी आप सुनने वाले हैं। सुखविंदर सिंह सपना अवस्थी की आवाज में, शब्द इसमें गुलजार के हैं और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है। आइए अब चलते हैं फिल्म संगीत के अगले नगमे की तरफ, जिसमें फिल्म का नाम है बचना है हसीनों और संगीत दिया है विशाल शेखर ने, शब्द है अन्विता दत्त गुप्ता के और गाया है के और शिल्पा राव ने।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत में अगला नगमा सुनते हैं। हम आपके हैं कौन फिल्म का, लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज, शब्द इसमें दिए हैं रविंद्र रावल ने और संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने। आइए साथ में मिलकर आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का, क्योंकि मौसम भी सुहाना है। तो आइए मौसम का है जादू नगमा साथ में मिलकर सुनते हैं।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

श्रोताओं, आइए अब अगला नगमा सुनते हैं कबीर सिंह फिल्म का, जिसे गाया है सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर ने। शब्द इरशाद कामिल के और बहुत खूबसूरती से संगीत सजाया है साचेत और परंपरा ने। आइए मिलकर सुनते हैं।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे अभी आप। अब सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। थोड़ी देर में आप जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: थोड़ी देर बाद 6:30 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजधानी में प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रमासिया गांव से इसका शुभारंभ किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने तय किया है कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से वंचित किसानों के कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग बढ़ाना होगा। सही बुआई, रोग से बचाव और कम बारिश की संभावना को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके अपनाना समय की जरूरत है।
1: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान, और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उतना ही डाला, तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे, और एक बैलेंस खाद का उपयोग, वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
0: 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जल से संबंधित उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन माहा का शुभारंभ किया। ये जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और जल उपयोग दक्षता जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में इस मिशन की शुरुआत की। कार्यशाला में जल संकट के समाधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 24 प्राथमिकता वाले अध्ययन और सहयोग के क्षेत्र पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं। राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हुई। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इस पहल के जरिए 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने

0: लाखों परिवारों को विश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया आधार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र साहू ने आज बालोतरा जिले का दौरा कर अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी जानी। श्री साहू ने बालोतरा थाने का निरीक्षण कर सीएलजी सदस्यों से फीडबैक लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि नए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के बाद तैनाती कर नफरी की कमी को दूर किया जाएगा।
1: देखिए, पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, एक साथ ही इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस को खाले का ध्यान है, वो उपलब्ध करा दी। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने और सफलता की कहानियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत और राज उन्नति जैसी सरकार की पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने इन पहलों के कार्यान्वयन में रुचि भी दिखाई है। बैठक के दौरान प्रदेश में खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़े विषयों के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने को कहा। मुख्य सचिव ने योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए पीएम पोषण योजना के पोर्टल को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग ने भवन निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। ये केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्री भांबू ने कहा कि मंत्रालय ने राजस्थान के 7 डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें झुंझुनू भी शामिल है। प्रदेश में मध्य और पूर्वी जिलों में आज भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर में बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश हो रही है। अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और सीकर जिलों में भी तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। पाली में तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। करौली में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज हुई ओलावृष्टि से कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
2: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे, जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में भी तेज आंधी के साथ कहीं कहीं ओले गिरे। इसके अलावा बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। राज्य में पिछले 3 दिन से जारी आंधी और बारिश के चलते ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे, वहीं रात का पारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। 3-4 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर

भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश के आसार हैं। झुंझुनू में 17वीं बटालियन जाट रेजिमेंट का 60वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और वर्तमान सैनिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सैनिकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा भी की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,00,000

0: 22% की बढ़त दर्ज की गई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों की द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केडिया ने तैयार किया है। झुंझुनू जोन में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 23,000 से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। बिजली की मांग बढ़ने और सरकार की ओर से सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के काम में काफी तेजी आई है। जिले में रोजाना 70 से 80 आवेदक सोलर सिस्टम लगाने के लिए मिल रहे हैं। गांव और कस्बों में शिविर लगाकर लोगों को सोलर सिस्टम के फायदे बताए गए। इसके बाद लोगों में सोलर पैनल लगवाने के लिए रुचि जागी है। डिस्कॉम के एसई महेश टीबड़ा ने बताया कि जोन के 23,000 सोलर सिस्टम से 86,000 किलोवाट से ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है। इससे डिस्कॉम को कई गांवों और ढाणियों तक बिजली सप्लाई में मदद मिली है। आमतौर पर पराली को किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या माना जाता है, किंतु जिले में पराली से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके लिए मंडरेला रोड पर आधुनिक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है। इससे बिजली जरूरतें भी पूरी हो रही है, साथ ही प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस संयंत्र से हर महीने 1 करोड़ से अधिक यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिससे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि कचरे को उपयोगी संसाधन में बदला गया है। साथ ही स्थानीय किसानों को भी अपने कृषि अपशिष्ट पराली का सही निस्तारण करने का जरिया मिल गया है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसके जरिए पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब से जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा, पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान के कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने जल बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक भागीदारी के साथ जल संरक्षण के प्रयास करने पर पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई रखी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से परिवादी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामलों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाने पीने की चीजों के नमूने लिए गए। इनमें गड़बड़ियां सामने आने पर 2 दुकानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही मिलावटी चीजों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग को मिलावट की जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा पिछले दिनों राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धोलपुरिया ने की। उन्होंने CMHO कार्यालय में बैठकर अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर धोलपुरिया ने झुंझुनू जिले के 236 उच्च जोखिम वाले गांवों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

0: झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने नई शुरुआत की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि अब उपभोक्ता और सेवा प्रदाता को सीधा पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा, जिसके जरिए दोनों पक्षों को मुकदमे की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी, साथ ही आपसी समझाइश से मामले को निपटाने का मौका दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से हो रही प्राध्यापक कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 31 मई से 5 जून तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 56,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस बार मानसून में जिले में 33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनू जिले के पंचगौरव में शामिल नीम के पौधों को इस मुहिम में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माय नूवी तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवण माथे जोर दिनो। 10 राज्यां माय राज्यसभारी 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनावरी अधिसूचना जारी। प्रदेश माय 3 सीटां सारू चुनाव फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश माय सराहना भी। और प्रदेश का कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़बाऊ नुकसान रा समाचार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश माए आज खेत बचाओ अभियान शुरू करी चियो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला रा रमासिया गांव इनरी शुरुआत की नी। ई मौके वे कहो कि दुनिया भर माए खाद रो मोल दूणो भेवण पाछे केंद्र सरकार किसाना ने सस्ती खाद मुहैया कराउण तय किन्नो है। कृषि मंत्री कहो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड नी बना सक्या किसाना सारू खास अभियान चलार ए कार्ड बनाया जावेला। वह कहो कि अब खेती माए सही बुआई बीमारियां बचाव और कम बिरखारी संभावना न ध्यान रखता था का वैज्ञानिक तरीका काम लेना फैला।
2: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक कितना पोटास कितना बोरान और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उत्ते डाला तो पैसा भी बचेंगे धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहां सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे और एक बैलेंस खाद का उपयोग वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा।
1: 30 जून तक चलने वाला ई अभियान रातेत किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरीखी योजना वारो फायदो पात्र किसाना ताई पुगावन रा खास जतन करिया चावेला। ई अभियान रो मकसद खाद ने संतुलित तरीकों काम लेवन ने बढ़ावो देवणो किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारी टेम सर देवणो और पंचायत लेवल माथा जनता री भागीदारी तय करनो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज पानी जुड़िया हलका माए बेहतरी सारू मिशन महा री शुरुआत कीनी। वह नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास रवारा में राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन कार्यक्रम में इनरी शुरुआत कीनी। इनरो मकसद पीवन रा पानी और जल संसाधन प्रबंधन आबो हवा में बदलाव रो सामोकरण रो बूतो और पानी न समझदारी काम लेवन सरीखा हलका में नूवी खोज न बधावो देवणो है। कार्यशाला में पानी री परेशानी आगीकरण रा तरीका रा बारा में विचार करियो चाट्यो है। ई मौके जल शक्ति मंत्रालय और इसरो जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन सारू उपग्रह आधारित अनुप्रयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियां ने मजबूत बनावन सारू एक करार माथे ही सही कीनी। राजस्थान समेत 10 राज्यां माए राज्यसभारी 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव

0: चुनावी अधिसूचना आज जारी कर दी रिची इंसागे पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू है क्यों है प्रदेश हूं राज्य सभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करयो जावनो है इंसारू नाम पाना 8 जून तई दाखिल करया जा सके है चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के पर्चा विधानसभा भवन रा कमरा नंबर 106 माए चुनाव अधिकारी सामी समारह 11 दोपहर 5:30 बजे तई दाखिल करया जा सके है नाम पानारी जांच 9 जून न करी चावेला पर्चा 11 जून न दोपहर 5:30 बजे तई पाछा लिया जा सकेला जरूरत पड़िया 18 जून न वोट पड़ेला और सिंजा 5 बजे पाछे वोटा री गिनती करी जावेला ध्यान जोग है कि राजस्थान नु राज्यसभा सदस्य भाजपा रा रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस रा नीरज डांगी रो कार्यकाल 21 जून न पूरो फेरियो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरूभिया आज 6 बरस पूरा फेक्या साल 2020 माए आज हीरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरी शुरुआत की नी ही इनरो मकसद रेहड़ी पटरी वाला ने आसान कर्ज मुहैया करावनो है योजना रे जरिए हाल ताई 75 लाख बत्ता लोगों ने 17,800 करोड़ रुपया रा कर्ज दिया चिया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सागे मुलाकात की नी इ मौके दोनों नेता जनता रा भलाऊं जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा और आवती कार्य योजनावां रे बारे माए चर्चा की नी पुलिस महकमा माए मकान रहवास रो काम देख रहा एडीजी भूपेंद्र साहू बालोतरा जिला माए अपराध और कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लीनो वे पुलिस वाला सागे मीटिंग कर वारी समस्यावां री जानकारी लीनी श्री साहू बालोतरा पुलिस थाना रो दौरो कर सीएलजी सदस्यों ही जानकारी लीनी इ मौके खबर नवीसा सागे बातचीत करता था काम वे कहो के जिला माए जरूरी साधना री पूर्ति बेगी करी जावेला एडीजी कहो के पुलिस लाइन सारू जमी आवंटन री कार्रवाई कर दी रिची है श्री साहू कहो के पुलिस माए नुआ भर्ती भया कर्मचारियां री सिखावण पाछे तैनाती कर नफरी री कमी दूर करी जावेला
1: देखिए पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षणाधीन मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे तो देखिए एक साथ ही इतनी सारी नफरी आ गई इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है पुलिस को खाले का ध्यान है वो उपलब्ध करा दी तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया तो आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि
0: होगी समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार का नियम कराया जा रहा नुआ नुआ कामारी कामयाबी री कहानियां तैयार करन रा हुकम दीना है वे आज जयपुर माए अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रहा हा मुख्य सचिव कहो के प्रदेश माए ग्राम विकास चौपाल ग्राम रथ अभियान मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान चंदन वन माई भारत और राज उन्नति सरीखी सरकारी कोशिशा ने देश भर माए बेहतरीन कोशिशा रा तौरों पिछाण मिली है मीटिंग माए प्रदेश माए खनिजा री खोज नीलामी प्रक्रिया पीवण रा पानी री उपलब्धता साफ सफाई पाना तून जुड़ी परियोजनावां और ऊर्जा हलका माए सुधारां रा बारा माए चर्चा करी जी मुख्य सचिव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रा कामकाज रोई जायजो लीनो वे राज्य री स्कूलां माए विद्यार्थियां ने पौष्टिक भोजन मुहैया करावण सारू अहलकारां रे लगातार जांच रा हुकम दीना झुंझुनू जिला रा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनायो जावेला इंसारू शिक्षा मंत्रालय 13 करोड़ रुपया मंजूर कीना है विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग इरा काम रो आज भूमि पूजन कीनो इस मौके विधायक

0: विधायक भांबू कहो के मंत्रालय झुंझुनू समेत राज्य रा 7 डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनावन रो फैसलो किन्नो है। झुंझुनू माए जाट रेजिमेंट री 17वीं बटालियन रो 60वां स्थापना दिवस समारोह उमाव सागे मनाई चियो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग फौजिया सामी आवन वाली चुनौतियां अरवारा निपटारा रवारा माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम में पहली वाला अर मौजूदा फौजी अर फौजियां रा परिवार वाला शामिल थिया। प्रदेश रा बीचला और उगनी जिला में आज ही आंधी बारिश रो सिलसिलो चालतो रहो। राजधानी जयपुर में सिंजानी पोर बादला मंड गया और कुछ हल्का में छांटो छिड़को भयो। अलवर टोंक सवाई माधोपुर दौसा और सीकर जिला में जोरदार बायरो बजन सागे। कठे कठे हल्की बारिश हुई तो कठे कठे ओला पड़िया। पाली माए बाजा जबरदस्त बायरा रे कारण कई रूखड़ा उखड़ गया और बिजली रा खंभा पड़ गया। करौली माए दोपहरम पाछे बिरखा हुई जिन्हों गर्मी थोड़ी साता मिली। दूजगानी नागौर माए ओला पड़वाऊ कपास री साख और सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ने नुकसान फियो।
1: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ ओले गिरने लगे जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में तेज आंधी अवन सागे कठे कठे ओला पड़िया। बूंदी भीलवाड़ा और राजसमंद समेत कुछ जिला में जोरदार बायरो बाजन सागे छांटो छिड़को भिवन रा समाचार है। राज्यरा घनखर हलका माए लारला 3 दिनों चाल रहा आंधी और बारिश रा सिलसिलाओ। दिन री बगत पारो 40 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो जबकि रात री बगत ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो जा रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 1 सप्ताह ताई प्रदेश माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है। 3-4 जून ने बीकानेर जयपुर भरतपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी री मद माए लारला महीना 1,94,000 करोड़ रूपयों बत्ती रकम भेड़ी करी ची। लारला साल मई महीना माए आ रकम 1,88,000 करोड़ रूपया ही। इन अवधि रे दौरान सामान री कर योग्य पूर्ति माए 26.9% जबकि सेवा हल्का माए 22.2% री बढ़ोतरी दर्ज करी ची। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज लागू हो गयो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बतायो कि इन करार दोनों देशों में माली और रणनीतिक रिश्ता और मजबूत बनेला। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नई तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवन माथे जोर दिनो। 10 राज्यों माए राज्यसभा री 24 सीटा रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटा सारू चुनाव भेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश माए सराहुना भी। और प्रदेश रा कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़वाऊ नुकसान रा समाचार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज चुके हैं। अब हमारे किसान बहन भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सू कार्यक्रम सुन बाला सारे किसान भवन भाइयों के धन्ना भाई कैंडी से गनी गनी राम राम। भाई बनाऊ आप देख रहे छा क निरंतर जो छ मौसम में परिवर्तन हो रो और जब यो मौसम में परिवर्तन हो छ थोड़ा घना छाटा पड़ जाओ छे तो आपन चा किसान आपन के ताई अपनी खेती बाड़ी कैडी झांकनी आओ छे अपना खेता कैडी झांकनी आओ छे। तो मां तो यह कहा छा ज्या ज्या भी अगर थोड़ी घनी बरखा पड़ गयो तो वो बढ़िया ऊंडी हकाई कर सके छे क्योंकि आपन अक्सर देखा छा जो गर्मी की आपन गरी जुताई करा छा तो उमा कल्टीवेटर छे तवो छे या मोर प्लाउ छे वो छोको लागे कोई ना और हकाई बढ़िया ना हो। पर ज्या ही ट्रम्प अगर छाटा पड़ गया तो वो किसान बन भाई बढ़िया ऊंडी हकाई कर सके छे। आप कता ही बता दिया क सरकार की एक योजना भी छे क खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में, यानी जल है तो कल है, यानी अगर आपने पास पानी की पर्याप्त सुविधा छ या अपन पानी बचा रखानेगा तो ही जत जार अपन आगा अपनी खेती बाड़ी मुकता ही काम ले पाऊंगा। अबार बरसात को मौसम आबाड़ो छ तो जैसे ही बरसात को मौसम आ ऊका फली अपना अपना जो कुआ छ तालाब छ बावड़ी छ खेत तलाई छ यहाँ कता ही बढ़िया साफ कर लिया और जैसे ही पानी बरसगो तो यहाँ मार एक टो जाओगे अपना अपनी फसल मुकता ही काम ले लेंगा। एक बात तो यह, दूसरी बात यह कि आपन अगर ऊंडिया का ही कर देंगा और जो पानी बरसोगो तो वो अपना खेत में ही रहोगे बारह बर न जाओगे तो बर न जाओगे तो अपना पर्याप्त अपना खेत में नमी बनी रहेगी। तो भाई बनाओ ऐसा काम अपन करा अक्सर आप देखा था कि अपन अपना पानी ब जाओ छत में भी अपन छावा तो अपना जैसे घर छ तो घर की अगर पक्की छत छ तो अपन वो पानी भी काम ले सका छा एक बड़ो टैंक बना लिया और वो पानी जो छ बढ़िया साफ सफाई करिया के बाद में पाइप को द्वारा उतार रूम में भर लिया वो पानी भी अपन काम ले सका छा। काम तो घना सारा छ और बात यही है कि अपन कता ही पानी बचानो छ। भाई बनाओ जीवन को पानी एक आधार छ हर जीव जंतु कता ही पेड़ पौधा के ताई पशु पक्षियों के ताई और यहाँ तक हर हर मनुष्य के ताई पानी की पर्याप्त आवश्यकता रहे और पानी के बिना जीवन कोई अपन कल्पना भी न कर सका पर यो सीमित मात्रा में उपलब्ध छे। आपको ताई बता दिया कि पृथ्वी में 97% जो पानी छे वो तो खारो छे और मुश्किल से 3% पानी छे वो मीठो पानी छे उमें तो अपन कता पानी पीणो छ काम लेणो छ नाणो धोणो छ अपनी खेती बाड़ी में काम लेणो छ तो इको बिल्कुल भी अपन दुरुपयोग न करा। अपन रात दिन धरती में सुदोहन कर रहे छा पानी बोरिंग खोदा में लिया छ नर को पानी आ रो छ जी भी अपना टिप्पर बात कर रहा छा नांगलिया खोल रिलाई कर रहा छा तो उठी ड्रेंग में खाड रहा छा। तो भाई बड़ा अपन कता पानी तो उपयोग तो लेणो छ खेती बाड़ी में भी लेनो छे आपने लेकर भी लेनो छे लेकिन बिल्कुल सावधानी से उपयोग लिया जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग लिया। आपने देखा छे शहरा में भी गाँव में भी जो पीबा को पानी छे कपड़ा धोबा को पानी छे वही भी आपने कहीं कर डाडी बना रहा छे कोई ब्रूस कर रो छे वो पानी नल खोल मल्यो छे पानी भरियो छे। तो भाई बनाओ अशे आपन कता पानी की बर्बादी न करनी वर्षा जल को आपन संचयन करेंगा और एक लेकर अभाणु से अपन कता प्रयास करना छ साफ सफाई कर अपन बढ़िया रखना ताकि जैसे ही बरखा को पानी आव और अपन एक संचय कर लिया आगा अपनी फसल में काम आओगो। भाई बनाओ आप कता बता दिया क संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में माता पिता को जो वैश्विक दिवस ई मनावा के लेकर 1 जून शुरुआत करी और इको मुख्य उद्देश्य यो छे का अपना जो माता पिता छे माता पिता तो सब कहे छे तो अपना भी जो माता पिता छे वहां को बहुत योगदान रहो छे और वहां की जो आपने वहां प्रवरिश करी छे वहां बहुत योगदान रहो एक लेकर वो धन्यवाद का पात्र।

0: वक्ता धन्यवाद देनी चाहिए। यो दिन यो याद दिलावा कुछ का आपने जो माता पिता छे वहां को आशीर्वाद आपने साथ हमेशा बने रहे, और जो भी माता पिता हो छे वो अपना बच्चा के लेख हमेशा बढ़िया ही सोचे छे, भले ही बच्चों माँ बाप के लेकर सोचे या न सोचे, लेकिन हर माँ बाप अपना बच्चा के लेकर बढ़िया सोचे छे। तो भाई बनाओ आज को जो अवसर छे एकता है अपन न गवावा, और अपना अगर जो बच्चों दूर रहो तो अपना माता पिता का ताई संदेश के जरिए भी शुभकामना दे सके छे। साथ ही अगर पास रहता वो तो आज को जो समय छे वही अपना माता पिता के साथ पितानी छाजे। पर भाई बड़ा बाता चीता अपना अपना जो कार्यक्रम छे चौपाल इमा आग भी करेंगा। अब अपन ले रहे चा कभी जो नई नई कृषि तकनीका छे वहां कता ही अपन अपनी खेती बाड़ी में अपनावा और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमावा, ये जानकारी देवा के लेख अपना स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश चंद गोयल साहब और वहां से बातचीत कर रहे थे अपना महेंद्र भाई।
1: किसान भाई बहनों चौपाल में अपन अपना पावना ने बुलावा चा और वहां से नई नई जानकारी अपन लिया चा, तो असे आज अपना चौपाल में पावना छे डॉक्टर मुकेश चंद गोयल आचार्य प्रसार शिक्षा एवं निदेशक प्राथमिकता निगरानी व मूल्यांकन कृषि विश्वविद्यालय कोटा। अपन यहाँ से बातचीत करेंगा नवीनतम कृषि अनुसंधान ताय अपना कर खेती का ताय लाभकारी कशा बनावा। चौपाल में स्वागत है। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: डॉक्टर साहब जैसे अपन बातचीत करा जो तकनीक छे वह बदल रही छे और खेती में भी नया नया अनुसंधान हो रहा छे, नया नया नवाचार हो रहा छे।
2: बिल्कुल सही बात है। जब अपन नवीनतम कृषि अनुसंधानों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इन अनुसंधानों का महत्व क्या है हमारे किसान भाइयों के जीवन में और हमारी कृषि उत्पादन विकास में क्या महत्व है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि हमारी जो कृषि है उस पर आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है, और जब इतनी आबादी की आजीविका कृषि हो तो निश्चित रूप से कृषि का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। जब हम कृषि के महत्व की बढ़ाने की बातचीत करते हैं तो इसमें साथ में ये भी है कि भले ही जिसके पास जमीन नहीं है बहुत से वर्ग वो भी कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी कृषि पर निर्भरता पूरी है और ये करीब आधी से ज्यादा बैठती है। मानो किसी के पास जमीन भी नहीं है तो वो भी कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि संबंधी कोई उद्योग या उससे जुड़ के अपना काम कर रहा है तो वो खेती से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस तरह से हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसको जीडीपी बोलते हैं वो करीब कृषि का 18% हिस्सा बनती है। इस चीज में जब अपन चर्चा करें तो भारत वर्तमान में चावल और गेहूं में पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है कि हमारा जो प्रति इकाई उत्पादन है उसमें हमारा इतने अच्छे परिणाम नहीं है। चीन में चावल बहुत होता है उसके बाद हमारा नंबर आता है, अमेरिका में गेहूं ज्यादा होता है उसके बाद हमारा नंबर आता है, क्योंकि उनकी उत्पादकता यानी प्रति इकाई उत्पादन है वो उनका ज्यादा है, हमारा कम है।
1: मतलब जो बीघा को उत्पादन जैसे कहा जाए भाई 10 क्विंटल 12 क्विंटल जो खड़ा जो वो आपनों कम अपेक्षा कर दो
2: उनका ज्यादा है और अनुसंधान की और जरूरत है। जो हम 10 क्विंटल का बीघा लग रहे हैं उसे हम 12 तक कैसे लाए, 15 तक कैसे लाए, इससे ज्यादा कैसे लगे। पहले हम अपनी पूरी पुरानी पद्धति पे करते थे, उसके बाद हरित क्रांति आई, उसके बाद हमने और बढ़ते गए और आज हम उत्पादन में बहुत अच्छी स्थिति में है। यदि हम 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों की बातचीत करें तो करीब 377 मिलियन मैट्रिक टन हमारा खाद्यान्न का उत्पादन है इस बार का, और यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और गत वर्ष से करीब 19 मिलियन मैट्रिक टन ज्यादा है। घटती हुई जमीन, बढ़ती हुई आबादी हमें ये चुनौती दे रही है कि हमें अभी यहीं पर नहीं बैठना है, हमें और आगे बढ़ना है।
1: हम जमीन में ये इतनी बड़ी जनसंख्या को अपन पालन कैसे कर सके वो भी एक
2: वो चीज भी करनी है, और पालन के साथ साथ में ये तो है ना कि हम दूसरे देशों को निर्यात भी करें, लेकिन इसके साथ में हो क्या रहा है। तो पहली बात तो अपन ये करें कि कृषि अनुसंधान का यही महत्व है कि जो अंतर है उत्पादन और उत्पादकता का, उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से जब तक हम नवीनतम अनुसंधानों को प्रयोग में नहीं लेंगे हम नहीं पहुंच सकते वहां तक।
1: तो ये जो अनुसंधान अपन करा था डॉक्टर साहब तो यहाँ बहुत सारी चुनौतियां भी अपना आती होगी।
2: हमारे यहाँ की जो मुख्य चुनौतियां हैं, एक तो उच्च गुणवत्ता का नवीनतम बीज की उपलब्धता है वो कई बार नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से यदि हम उच्च गुणवत्ता के बीज की बातचीत करें, यदि हमें वो मिल जाए 15-20% हमारा उत्पादन बढ़ सकता है।
1: बड़े क्वालिटी को
2: बढ़िया क्वालिटी का यदि हमें उच्च क्वालिटी वाला गुणवत्ता का बीज मिल जाता है तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक आदान है।

0: इनपुट है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से हमारा जमीन का सही प्रबंधन भी हमें करना पड़ेगा, उसके साथ में हमारी सिंचाई की जो चुनौतियां हैं, कहीं कम बारिश है कहीं ज्यादा है, तो उसको बेहतर रूप में हम कैसे उसको उपयोग में लें। दूसरी बात है कि अनिश्चित मानसून जो हमारे यहाँ का है ये हमें बहुत प्रभावित करता है, और जब अनिश्चित मानसून होता है तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके अनुसार अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन वह अनुसंधान वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं हमारे किसान भाई तक, वो तय करता है कि हम कितने आगे बढ़े हैं। तो उनको वहां तक पहुंचाना, आधुनिक तकनीक को उन तक पहुंचाना, तो हम यहाँ पे जो अनुसंधान की बातचीत कर रहे हैं इसमें जुड़ी हुई कड़ी एक प्रसार शिक्षा की भी रहती है। कहते ना कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों पहिए बराबर में चलेंगे तब जाके हमारे किसान भाइयों को समृद्धि और वो हम बना सकते। निश्चित रूप से जो मैंने एक चुनौती और जो समस्याएं के रूप में बात रखी किसान भाइयों के सामने, उनमें ही अपना उत्तर छुपा हुआ है। निश्चित रूप से इन सब चीज का एक ही समाधान है, और वो है हम नवीनतम अनुसंधानों से जुड़ें और उनको अपनी खेती में अपनाएं। सबसे बड़ा तो समाधान ये है। अब उनमें क्या क्या प्रमुख अनुसंधान है जिन पे हमारे किसान भाइयों को, कृषक वर्ग को ध्यान देना चाहिए, नवीनतम किस्मों में ऐसे फेर बदल करना जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े। जो जलवायु परिवर्तन के अपन बातचीत कर रहे हैं, क्षेत्रवार अलग अलग तकनीक की जरूरत होती है, किस क्षेत्र में कौन सी तकनीक की आवश्यकता है उस तकनीकी को वो अपनाए, साथ में टिकाऊ की खेती की बातचीत करें। ऐसा नहीं हो कि केवल हमारी पीढ़ी खेती कर जाए और जमीन को हम बंजर बना के छोड़ दें और अगली पीढ़ी को कुछ नहीं मिले, तो हमारी जो खेती हो वो इस तरह की हो कि अगले आने वाली पीढ़ियां भी उससे और ज्यादा उत्पादन ले सके, यानी जमीन का मृदा का प्रबंधन बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि कृषि सूचना प्रौद्योगिकी में आज जितना तेजी से बदलाव आ रहा है वो पहले नहीं हुआ था। मैं तो यहां तक कहता हूं मेरे किसान भाइयों को कि यदि हमने कोई 6 महीने पहले कोई नवीनतम कृषि अनुसंधान किया है तो हो सकता है 6 महीने बाद कोई दूसरा और उसके ऊपर और नवीनतम अनुसंधान आ जाए, क्योंकि हमारे किसानों में भी कई वर्ग होते हैं। एक तो ये होता है जो लास्ट तक नहीं अपनाता है, एक होता है दूसरे को देख के अपनाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो नवाचारी किसान होते हैं, नई तकनीक आई और तुरंत अपना लेते हैं।
1: कहते ना कि भाई जो शुरुआत करोगे तो आगे
0: फायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो ऐसे हमारे किसानों की सोच की जरूरत है। दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट और इनकी जो हम बातचीत किया करते थे या सुना करते थे या एक सपने के रूप में देखा करते थे, आज वो हमारे कृषि में भी लागू हो गई हैं। हमें उनसे भी जुड़ना पड़ेगा, नवीनतम अनुसंधान ये भी बोलते हैं।
1: कैसा कैसा अनुसंधान चाहे बार वर्तमान में जय आपने जो किसान भाई जो वो अपना और ज्यादा उत्पादन आपने ले सके।
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो मैंने मेरे किसान भाइयों के सामने रखे, उनमें कुछ बिंदु ये भी हैं कि क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जमीन घटती जा रही है तो हमारे लघु और सीमांत कृषकों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी जमीन छोटे किसान ज्यादा होते जा रहे हैं, तो हमारी तकनीक भी उसी तरह की हो, नवाचार का वो करने की हो, ताकि हमारा वो जो लघु कृषक है और सीमांत कृषक है वो अपना सके। एक तो बड़े किसान की होती है, एक छोटे किसान की होती, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो वो चीज भी हमें ध्यान रखना पड़ेगी, मृदा का प्रबंधन भी रखना पड़ेगा। सेंसिंग बेस, रिमोट सेंसिंग बेस आज की तारीख में तकनीक, जैसे हम विदेशों की बातचीत करते हैं, इजराइल की बातचीत करते हैं, आजकल यहां भी वो तकनीक लागू हो चुकी है। सेंसर बेस है, यानी सेंसर से हमें पता चल रहा है, हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि हमारे फला पौधे को क्या दिक्कत हो रही है या क्या नहीं पहुंच रहा है वहां, वो हमें वहां पे पता चल जाता है। लेकिन फिर भी हमारे जो अपनी भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें अनुसंधान के इस तरह के जो डाटा हैं उनको और ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत है ताकि हम इनको अच्छी तरीके से लागू करें। जो आप तकनीकियों की बातचीत कर रहे थे, हालांकि तकनीकी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 5-6 तकनीकी किसान भाइयों के सामने मुख्य मुख्य रखना चाहूंगा। एक तो मुख्य रूप से है हमारी समन्वित खेती पद्धति, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका हम अधिकतम यदि उपयोग करना है और उसमें आपस में ही करना है तो हमें IFS को अपनाना पड़ेगा। यानी वो ये कहती है कि हम केवल एक फसल विशेष पर निर्भर ना रहें, केवल हम उद्यानिकी पर ना रहें निर्भर, ना फसलों पर रहें, ना पशुपालन पर रहें, इन तीनों घटकों का ऐसा एक संतुलन बना के हम खेती करें ताकि यदि किसी जलवायु परिस्थिति के कारण एक फसल हमारी खराब हो जाती है तो दूसरे जो हमारे घटक हैं वो फायदा देंगे। ऐसा नहीं हो कि उनकी वजह से हम बिल्कुल ही जो हीरो बनने वाले थे वो जीरो नहीं बन जाएं,
1: पूर्ण नुकसान हो, बस आप
0: बच सकते हैं।

0: तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा इसमें फायदा ये होता है कि जितने हमारे पशु पाले हुए हैं, पशुओं का जो वेस्ट निकल रहा है उससे हमारी खाद बन रही है, खाद बन रही है तो उन्हीं फसलों में हम काम ले रहे हैं, काम ले रहे हैं तो रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। साथ में ही जो आज की तारीख में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का बड़ा एक प्रचलन अभी चलन चला है, स्वास्थ्य और इन सब चीजों को देखते हुए, तो निश्चित रूप से उसमें भी वो फायदा देता है। नहीं तो जैसे ही हमारी रवि की फसल कटी और बस वो उनको जला देते हैं, और जलाते हैं तो वो सोचते हैं कि फसल अच्छी होगी, जबकि हम जमीन को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो सरकार ने इसमें प्रयास भी किए हैं कि हम इनको रोकें और किसान भाई ऐसा नहीं करें, अब उनको फायदे भी नजर आने लगे। एक कमरे के बराबर हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, अब उसकी वो रोलिंग करके एक गट्ठर के रूप में ले जाते हैं, मतलब मशीनें ऐसी आ गई तो कम जगह में ज्यादा भी हो जाती है। दूसरी जो चीज है, उद्यानिकी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जमीन कम है तो निश्चित रूप से हमें उद्यान के क्षेत्र में बहुत आगे आना होगा। सब किसान भाई जानते हैं कि लोग आजकल अखबारों में भी, समाचार पत्र, मीडिया चैनल में भी हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई शहरी लोग छतों पे खेती करने लगे। निश्चित रूप से ये कम जगह में ज्यादा उत्पादन का एक तरीका है, तो उद्यान की फसलों का हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन हालांकि थोड़ी सी इंटेंसिव होती है, लेबर ज्यादा चाहिए होती है, देखभाल ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन लाभ भी उतना ही ज्यादा मिलता है और भाव भी हमें ज्यादा मिलता है।
1: एक तरह से खर्च डॉक्टर साहब जो सुनी ची माना भाई खेती में कुछ छिपी बेरोजगारी भी रह, तो यदि अपने रोज काम कर रहे हैं तो जो वह छिपी बेरोजगारी जो अपनी नजर न आ रही तो उनसे भी अपने में बच सका था।
0: इसी तरह के से मैं बताऊं, हमारे यहाँ झालावाड़ में, कोटा में, बारा में ऐसे ऐसे किसान हैं जो स्ट्रॉबेरी, और इनका नाम ही हम सुनते थे, ये हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि उनकी जॉब डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी कि हमें इसमें अपना रोजगार मिल जाए, अब वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन चुके हैं। इसी तरह से जो एक मुख्य बात आती है कि जलवायु परिवर्तनशील जो हमारी तकनीकी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज पहले अपने तीन ही मुख्य रूप से मौसम हुआ करते थे, चार महीने के, गर्मी, सर्दी और बरसात। अब वैसे तो ऋतु तो हमारी छह होती हैं, पर अब देखिए समय कितना परिवर्तन हो गया कि एक एक महीने तक आगे सीजन बढ़ गया। मौसम ऐसा हो रहा है, कहो तो पूरे फरवरी मार्च में ही कुछ मौसम अजीब तरीका हो जाए और हमारे किसान की जो तैयार फसल है वो भी खराब हो जाए। जलवायु परिवर्तन आधारित जो तकनीकी की है उसमें बहुत अनुसंधान हुए हैं हमारे देश में, हमारे केंद्रों पर, तो किसान भाइयों को इस आधारित जो तकनीकी है कि पानी कम पड़ रहा है तो उसी तरह की हम तकनीकी अपनाएं, ज्यादा पड़ रहा है तो हम उसी तरह की उसमें तकनीकी को अपनाएं हैं, तो ये हमारे अनुसंधान केंद्रों पर जाकर के
1: अपन देखा था जतनों दूध उत्पादन न हो ना उनसे ज्यादा पशु अपने लोगों के पास
0: कोई लीटर आधा लीटर दूध निकाला और छोड़ दिया रोड पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब हम सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। अच्छी नस्ल के भले ही कम जानवरों उनको पालें और उनका पूरा का पूरा एक पशुपालन महत्वपूर्ण घटक है, इस पे भी नवीनतम अनुसंधान पूरा उनका ध्यान रखें। फसलें, उद्यान की और पशुपालन तीनों में एक समन्वय बनाते हुए जलवायु आधारित नवीनतम जो हमारे कस्टमर की हम क्या उत्पादन करें, यह भी एक अनुसंधान का विषय है।
1: बिल्कुल,
0: कि हमारे जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसकी क्या डिमांड है, वो किस तरह का उत्पादन चाहता है, उत्पाद चाहता है। हम यदि उसी तरह का उत्पाद उसको बना के देंगे तो वो हमारा जल्दी बिकेगा और अच्छा बिकेगा। यदि हम हमारे हिसाब से अपना उत्पाद बनाएंगे जिसकी डिमांड नहीं है, तो भले ही आपका उत्पाद अच्छा हो लेकिन उसकी मांग पूरी अच्छी नहीं होने के कारण आपको फायदा नहीं मिलने वाला। इसी तरीके से प्रसंस्करण की बातचीत है, यानी कुल मिला के, क्योंकि आज की कहते हैं ना कि आज हमारे उपभोक्ता के पास पैसा है तो कहते हैं कि चोट मारनी है तो गर्म लोहे पे मारो, ताकि हम उसको जैसी आकृति देना चाहें वैसी दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारा उपभोक्ता क्या चाहता है, उनके जेब में पैसा है, हम वही उत्पाद करके दें उनको और अपने मनमाने पैसे उनसे वसूलें ताकि हमें फायदा हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत ही बड़ा बात है डॉक्टर साहब आपने बताया। चल लोग बागे यदि किसान भाई यहाँ का अपना हो तो ज्यादा लाभ ले सके। अब ऐसी और कैसी कैसी नई तकनीक आ जाए जहाँ कहता है बार वर्तमान में अपना किसान भाई बहन अपना कर ज्यादा फायदा ले सके।
0: देखिए तकनीक की जहाँ तक बात करें कि बहुत सारी हैं, अपन अभी इस छोटे से समय में सबको नहीं गिना सकते। मैंने मुख्य तकनीकियां अभी आपके सामने रखी, लेकिन कुछ बिंदु जरूर मैं किसान भाइयों के सामने रखना चाहूंगा कि जो हमें तकनीकी अपनाने में फायदा पहुंचा सकते हैं, अनुसंधानों को अपनाने में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, उनमें यह है कि नवीनतम कृषि अनुसंधान से लगातार जुड़े रहें। अनुसंधान केंद्र या विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग के भी बहुत

0: सारे इस तरह के सूचना तंत्र हैं, उनसे हम लगातार जुड़े रहें, उनके विशेषज्ञों से जुड़े रहें, तो उनसे हमें नवीनतम जो अनुसंधान हो रहे हैं, बताया कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल पता चला कि कोई नवीनतम और अनुसंधान आ गया,
1: जी बिल्कुल,
0: तो उनसे हम जब लगातार संपर्क में रहेंगे तो हमें वो नवीनतम अनुसंधानों की जानकारी मिलेगी और उनको हम अपना के देखें। यदि कोई नवीनतम तकनीक आई है और आपका एकदम से पूरा विश्वास नहीं बन पा रहा है, तो आप भले ही थोड़े से क्षेत्र में करके देख लें, ताकि अगली साल आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कृषि में उद्योग का दर्जा यानी उद्यमता की ओर ले जाने के लिए हमें इसमें कितना रुपया लगा, एक आदान में हमने कितना रुपया लगाया, इससे कितनी हमें लाभ हुआ, उसी तरह का जब गणित हमारे सामने होगा तो हम उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं कि इसमें इतना पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ, इसके बजाय ये दूसरी तकनीकी में पैसा लगाते तो ज्यादा फायदा होता है। यानी पूरी आर्थिकी विश्लेषण यदि हम करेंगे, अगली बार जब हम मौसम में करने वाले हैं तो उन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी लागत भी कम होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, सबके मोबाइल नंबर हैं, ग्रुप से जुड़े रहें और उनसे नवीनतम तकनीक लेते रहें और उनसे चर्चा करें। तो मैं एक चीज जरूर अंत में किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि कोई बात हो तो आप कृषि वैज्ञानिकों से, कृषि विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में रहते हुए अपनी जो जमीन है उसका बेहतर प्रबंधन करें, जल का बेहतर प्रबंधन करें, हमारी जलवायु है, जलवायु के अनुसार हम परिवर्तन करते हुए खेती करें, और इनके बारे में हमारी सही जागरूकता होगी तो निश्चित रूप से हम जो नवीनतम अनुसंधानों को अपनाने की बात कर रहे हैं, हमारा किसान भाई जरूर अपनाएंगे, और अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। यही मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई सर। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
2: मैं बनो कतनी जो छ अच्छी अच्छी बातें बताई, पर मैंने बता दी आपन ने सुन ली, यहाँ कता ही आपन अपना जीवन में अपनी खेती बाड़ी में काम लेगा जद ये बाता करबा को और ये बाता सुनबा को उद्देश्य पूर्व होगा। तो भाई बनाओ पल्ले गांठ बांध लिया और जो भी बात बताई छे वही आसुई जो छे अपन अपनी खेती बाड़ी में जरूर काम लिया। भाई बनाओ अब करा मनोरंजन और सुन लिया एक मीठो सो लोक भजन धनराज रावल की आवाज में।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई बड़ों आज जो छे विश्व दुग्ध दिवस भी छे और इनकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में इनकी 1 जून सु मनावा की शुरुआत करी। इनको मुख्य उद्देश्य छे कि दैनिक जीवन में जो दूध छे या डेयरी का उत्पाद छे जैसे पनीर छे मक्खन छे दही छे छाछ छे ये सबको तय प्राप्त होनी चाहिए पूरी दुनिया में। भाई बड़ा भारत दुनिया को सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक देश छे लेकिन अपन यहाँ देख रहे छा क अपने पास जो पशु छे वो हाल भी उसे कोई न जैसा होनी चाहिए। पशु तो अपना बाड़ा में चार बंद रहे छे और दूध भी वहां के 4 लीटर ही हो रही छे यानी पाव आधा किलो वाली भी अपने गोटे गाय भैंसा छे। तो भाई बड़ा पशु अशु पाला जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे और पशु की खुराक भी अपन बराबर रखना। आप कहता है 12 कोटा मंडी से प्राप्त कृषि उपज मंडी का भाव बता दिया। गेहूं को भाव रहे हो 2,281 रुपया से ले और 2,690 रुपया, सरसों 6,961 रुपया से ले 7,811 और सोयाबीन 6,900 रुपया से ले और 7,451 रुपया, धनी और 11,376 रुपया से ले 14,700 और उड़दरी 5,500 रुपया से ले और 6,290, तिलरी 8,182 रुपया से ले और 9,476 रुपया और मूंगरी 6,503 रुपया से ले और 7,415 रुपया। एक साथ ही चना को भाव रहे हो 4,901 रुपया से ले और 5,625 और लहसुन रहे हो 5,300 रुपया से ले 14,750 रुपया। भाई बड़ा मौसम में आपको तय बता दिया कि अजमेर भीलवाड़ा बूंदी कोटा चित्तौड़ जयपुर सवाई माधोपुर टोंक या में तेज हवा का साथ भीषण तूफान आवा की संभावना है। बण भाई अपना घर पर ज्यादा ही आवश्यकता हुआ तो घर का बाहर खड़ा वह कहचन का टर्म को काम टर्म पर करनी पड़ोगे और अब तो जो चाहे अपना चौपाल में बिल्कुल भी टर्म को है ना आपका धन ना भाई कर दे दो आ गया चालासा राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर पर रेडियो रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं शशिकांत सुमन।
1: श्रोताओं नमस्कार।

0: नमस्कार। 8 जून 2026 को भारत में संगठित रेडियो प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर प्रस्तुत है एक विशेष रेडियो रिपोर्ट। 8 जून 2026 ये केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय संचार क्रांति के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। तंग गलियों के चौबारे से लेकर खेत की मेड़ तक और आजादी के आंदोलन की गूंज से लेकर आज के समय तक रेडियो हर भारतीय के सुख दुख का साथी रहा है। जब हम रेडियो के 90 वर्षों की यात्रा को देखते हैं तो इसका सबसे सुंदर रूप हमारे ग्रामीण अंचलों में नजर आता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए रेडियो ने देश के अन्नदाताओं को एक नई राह दिखाई। खेत में काम करता किसान हो या शाम को ढलते सूरज के साथ चौपाल पर जुटने वाली भीड़, चौपाल जैसे कार्यक्रमों ने कृषि विज्ञान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक खेती और उन्नत बागवानी की जानकारियों को सीधा जमीन तक पहुंचाया। स्थानीय बोलियों और लोकगीतों के माध्यम से रेडियो ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि देश के दूर दराज के गांवों को मुख्यधारा से जोड़े रखा। परंपरा को सहेजते हुए आधुनिकता के इस दौर में भी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का यह सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम आज भी हर दिल पर राज कर रहा है। श्रोताओं, रेडियो के 90 वर्ष के इस गौरवशाली सफर में हमसे जुड़ चुके हैं हमारे नियमित श्रोता। आइए सबसे पहले जानते हैं इनसे इनका परिचय। आपका शुभ नाम?
1: मैं मोहन सिंह हाड़ा और आकाशवाणी कोटा का नियमित श्रोता हूँ और आकाशवाणी कोटा से जुड़ा हुआ हूँ
2: जी।
1: पूरे सारे कार्यक्रम को सुनता हूँ, सुबह प्रातः काल अर्चना से लेके सभा का अंतिम कार्यक्रम होता है वहाँ तक मैं सुनता हूँ। और एक खुशी की बात यह भी है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम तो हम सुनते ही हैं, स्थानीय समाचार सुनते हैं, स्थानीय कार्यक्रम को सुनते हैं, फिल्म संगीत को सुनते हैं। मतलब जो आकाशवाणी का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान, मनोरंजन और सूचना
2: जी।
1: तो इन तीनों चीजों से हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं।
0: मोहन सिंह जी, आपका और रेडियो का रिश्ता कितना पुराना है?
1: मैं जब बहुत छोटा था, जब मैं 10 साल के आसपास था, सबसे मैं रेडियो से जुड़ा हूँ, रेडियो से लगाव था मुझे। मेरे फादर रेडियो चलाया करते थे, वो सुनते थे, उनको समाचार सुनने का बहुत शौक था। खास करके बीबीसी लंदन के जो सुबह के समाचार आते थे, रात के समाचार उनको सुनते थे, तब से मेरा जुड़ाव रेडियो से हुआ
2: जी।
1: और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं धीरे धीरे रेडियो की ट्यूनिंग करने सीखा। और उस दौर में जो रेडियो चलता था वो जैसे कुड़कुड़ की आवाज आती थी तो उसको ट्यूनिंग करते थे, कभी इधर मोड़ते थे, कभी यूं करते थे, कभी ये करते थे, तो बड़ा आनंद आता था सर, बहुत अच्छा था
2: बहुत।
0: आपने पहली बार रेडियो पर कौन सा कार्यक्रम सुना और कहां सुना?
1: मेरा गांव था बूंदी जिले में, जहां तक मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जब वहां था और मैंने वहां सुना। मेरे घर में जो रेडियो था उस पे ही सुना और मेरे फादर जो राजस्थान पुलिस में थे वो समाचार सुनने के साथ साथ कभी कभी बीच में लंच में आते थे तो गाने भी सुनते थे और वेद भारती का पंचरंगी प्रोग्राम वगैरह आया करता था
2: जी।
1: जब मैंने पहला कार्यक्रम सुना था वो हवा महल का कार्यक्रम था, उसके बाद में हम लोग चौथी पांचवी क्लास में कोटा आ गए थे।
0: मोहन सिंह जी, बीते समय की बात की जाए तो पूरा परिवार और पूरा गाँव एक साथ बैठ कर रेडियो सुना करता था, उस समय की यादें आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है।
1: जी, इसकी तो बहुत यादें हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। जब रेडियो पे कोई कार्यक्रम आता था, जैसे फिल्म संगीत का आता था या खेती किसानी का कोई कार्यक्रम आता था या स्वास्थ्य का कोई कार्यक्रम आता था तो सब लोग क्या गांव की चौपाल पे एक चूंतरी पे बैठ जाते थे और रेडियो को रख देते थे, चलाते थे और सुनते थे, सब उसका आनंद लेते थे। और ख़ास कर तो मैं एक बहुत बड़े कार्यक्रम का जिक्र करना चाहता हूँ, बुधवार के दिन जो अमीन सैनी द्वारा कार्यक्रम आता था बिना का गीतमाला, तो वो 8 दिन में एक दिन कार्यक्रम आता था, उसका पूरा 7 दिन इंतजार रहता था कि बुधवार कब आएगा, कब अमीन सैनी जी की बिना का गीत माला का जो कार्यक्रम है वो कब आएगा, कौन कौन से गाने शामिल होंगे, कौन से हिट होगा। और हम लोग लिस्ट भी बनाया करते थे कि भाई ये गाना ये आ सकता है, ये आ सकता है। अधिकतर हमारे जो गेस्ट था वो सफल हो जाता था। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिससे लोगों का जुड़ाव था। 100-150 लोग चबूतरे पर रात में बैठ के चबूतरे पर इस कार्यक्रम को सुनते थे, बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। हम इंसान की जो आवाज थी वो बांधे रखती थी मतलब
2: जी। और जब पहली बार परिवार में

0: रेडियो आया तो उस समय परिवार का माहौल कैसा था?
1: मेरी माँ थी और मेरे बड़े ब्रदर थे और मैं था, सिस्टर थी, तो सब लोग क्या है कि राजस्थानी कार्यक्रम जो आया करते थे, राजस्थानी संगीत, तो उसको अधिकतर महिलाएं भी सुनती थी, हम लोग भी सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा जुड़ाव हो जाता था।
0: बिल्कुल। मोहन सिंह जी, रेडियो ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला?
1: आज जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है या बोलना आया है या बोलना सीखा है या लयबद्ध तरीके से अगर किसी चीज़ को मैं बोलना सीखा हूँ तो वो मैंने रेडियो से ही सीखा है। रेडियो एक ऐसी चीज़ है, दूर दूर गांव में ढाणी ढाणी जहाँ किसी की पहुँच नहीं है वहाँ रेडियो की पहुँच है। लोग रेडियो सुनते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में आज भी सुनते हैं, और रेडियो जैसा कोई दूसरा साधन हो नहीं सकता आज के दौर में, जो इसमें गाने सुनने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आकाशवाणी के द्वारा जो कोई भी बात कही जाती है, चाहे वो समाचार हो या कोई ज्ञान विज्ञान की बात हो, संगीत की बात हो या स्वास्थ्य चर्चा हो, तो ये एक ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब कि जो आकाशवाणी ने जो कहा है, जो समाचार में आया है, वो बिल्कुल कभी गलत हो नहीं सकता। तो आकाशवाणी के द्वारा कहा गया शब्द एक ऑथेंटिकेशन होता है। आकाशवाणी एकदम साफ सुथरी लोगों से जुड़ी बात करती है। वर्तमान में जो खेती किसानी के कार्यक्रम आ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोटा आकाशवाणी से कार्यक्रम आते हैं, हफ्ते में 4 कार्यक्रम आने लग गए अब तो लोगों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। इतना फायदा हो रहा है कि उनके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या उनको घर बैठे हल हो रही है, उनको जानकारी मिल रही है, डॉक्टरों की मतलब इधर उधर उनको चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, सीधे किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी डॉक्टर को बताकर उसका इलाज ले सकते हैं। क्योंकि आकाशवाणी में आपका समय खराब नहीं होता, अपना मनोरंजन करते हुए आप अपने किसी भी काम को कर सकते हो। कि मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था तब मैं रेडियो को ऑन करके और संगीत के साथ पढ़ाई करता था, क्योंकि उससे मेरा जो कंसंट्रेशन बनता था और मेरे को जो मैं पढ़ता था वो सब याद हो जाता था। संगीत को सुनना एक बहुत अच्छी बात है, ये एक अपने आप में एक थेरेपी है, और जो कोटा आकाशवाणी के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब है। यहाँ के जितने भी उद्घोषक हैं, जो कार्यक्रम बनाने वाले हैं, बहुत मेहनत के साथ में अपने कार्यक्रम बनाते हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। लोगों की जिज्ञासा को जान के, उनकी रुचि को जान के ही आकाशवाणी कोटा में कार्यक्रम बनाए जाते हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं।
0: मोहन सिंह जी, आकाशवाणी से सुनी जाने वाली कोई ऐसी आवाज जो आज भी आपके मन में गूंजती हो?
1: मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ
0: जी।
1: बहुत वर्षों पहले सन 1977 के आसपास आकाशवाणी दिल्ली से 8:45 बजे समाचार आया करते थे। आकाशवाणी के जो समाचार वाचक थे देवकीनंदन पांडे, उनकी जो जोशीली आवाज थी ना, लोग उनके वो समाचार सुनने के लिए बैठ जाया करते थे। इतने जोश से समाचार पढ़ते थे, उनकी आवाज में इतना दम था, इतनी ताकत थी कि लोग बंधे रहते थे। ये आकाशवाणी है, अब आप देव के नंदन पढ़ने से समाचार सुनिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत पसंद के मेरे वो समाचार वाचक।
0: बिल्कुल, वो आवाजें थी जो दिल को छू जाती,
1: दिल को छू जाती थी, और आज भी वो हमारे दिल को छू रही है, हमें याद है, उनको याद कर रहे हैं। रामनारायण जी मीणा का एक कार्यक्रम आता है, वो रात रानी के फूल, बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है, मुझे बहुत पसंद आता है।
0: बिल्कुल, आपने आकाशवाणी कोटा से बात की और रेडियो के गौरवमय 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं आप, तो इसके लिए आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने मुझे मौका दिया, और हमारे रेडियो हमेशा रहेगा, प्रगति करेगा और लोगों का मनोरंजन करता रहेगा, ज्ञान बढ़ाता रहेगा और सूचना देता रहेगा। धन्यवाद।
0: अब हमारे साथ एक और रेडियो श्रोता हैं, आइए जानते हैं उनसे उनका परिचय।
2: मैं ललित कुमार शर्मा गुलाबबाड़ी रामपुरा में रहता हूँ और बरसों से मैं रेडियो सुनता आ रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम पे, जब रेडियो चले ही थे, लाइसेंस भी होता था 15 रुपए का, उस टाइम पे मैं कमरे में रेडियो चल रहा था, कोई आए सज्जन कि भाई आपका रेडियो चल रहा है, मैंने हाँ, तो उन्होंने कहा दिखाओ, देखा लाओ लाइसेंस लाओ, तो पोस्ट ऑफिस में 15 रुपए जमा होते थे
0: जी,
2: और लाइसेंस दिखा दिया उनको, कुछ नहीं कहा।
0: बिल्कुल,
2: तब से मेरी जानकारी।
0: कितना समय हो गया आपको रेडियो सुनते हुए?
2: मैं ये मानो आप 74-75 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बीच के पीरियड में जैसे सर्विस के टाइम पे कम सुन पाता था, और अब रिटायरमेंट के बाद में डेली रेगुलर सुनता हूँ।
0: सर्विस किस में थी आप?
2: मैं कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद पर था
0: जी।
2: आकाशवाणी

0: जो वीज भारती वगैरह चलते थे उसमें सुना कर
1: रेडियो सेट,
0: रेडियो सेट पे।
1: अब आसान हो गया रेडियो सुनना,
0: बहुत अच्छा हो गया। पहले तो उसको लिए लिए फिरना पड़ता था या कहीं जाते तो घर पे रहता था क्योंकि इतना वजन कहीं जाकर ले जा नहीं सकते थे। और अब मोबाइल को जेब में भी रखकर आप आराम से कहीं भी किसी भी जगह सुन सकते हैं।
1: और रेडियो के दूसरी तरफ बैठी हुई आवाज जब वहाँ से आती है तो श्रोताओं को कैसा लगता है कि जैसे वो सीधे हमसे ही बात कर रहे हो,
0: डायरेक्ट जैसे सामने सामने बात कर रहे हो, और बहुत अच्छा लगता है।
1: रेडियो पर कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे

0: लगता है कि जैसे वो सीधे हमसे ही बात कर रहे हो,
1: डायरेक्ट जैसे आमने सामने बात कर रहे हो, और बहुत अच्छा लगता है।
0: रेडियो पर कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: मुझे सारे कार्यक्रम में जनरली सब, कभी कभी जो स्टेशन पे नहीं अगर सही सेट होता तो दूसरे स्टेशन भी लगा लेता हूँ।
0: जी जी जी।
1: और पूरे राजस्थान का जितने भी चैनल हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ
0: जी,
1: और सुन लेता हूँ।
0: किस समय ज्यादा सुनना पसंद करते
1: मैं
0: हैं?
1: सुबह 6 बजे से और रात को 11 बजे तक सुनता रहता। बरसों से मतलब मैं क्रिकेट वगैरह कॉमेंट्री वगैरह बहुत सुनता था, इस वजह से मुझे रेडियो का चाव ज्यादा रहा। मुझे ज्यादातर क्रिकेट और संगीत और पुराने गाने वो ज्यादा पसंद थे।
0: तो रेडियो की आम व्यक्ति के जीवन में भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं?
1: बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धक है, और जानकारी नई नई चीज़ें काफ़ी कुछ लोगों को मिलता है इससे, और हर तरह की मतलब इसमें जानकारियां वगैरह मिलती है।
0: तो आपके जीवन में किस तरह के बदलाव रेडियो के माध्यम से हुए?
1: काफ़ी चेंजेज आए हैं, जानकारी, अनुभव, लोगों के विचार और ज्ञान, सारी चीज़ें इससे मिली है मुझे।
0: अंत में संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसको अपने जीवन में अपनाएं।
0: आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अब हमारे साथ हैं डॉक्टर आरसी साहनी, नशा मुक्ति विशेषज्ञ कोटा। डॉक्टर आरसी साहनी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार साहब।
2: साहनी साहब, रेडियो अपने गौरवमयी 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, इस अवसर पर आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि 90 वर्ष इस जबरदस्त जागरूकता के अभियान को, खासकर जो मेरा पक्ष है वो आप कर रहे हैं, सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और जन जन तक एक स्वास्थ्य के एंगल से यदि हम देखें तो जो आप और हमारे सहयोगियों के थ्रू पहुंचा रहे हो बात को, ये एक इंग्लिश राइटर ने कहा है कि अवेयरनेस इज द शार्पेस्ट वेपन, जो जागरूकता है वो सबसे तेज धार वाला हथियार है जिससे कोई भी बड़े से बड़ा जंग लड़ा जा सकता है
0: जी।
3: तो ये एक जंग जो हम लड़ रहे हैं, जो आप लड़ रहे हो, जो हम सब लड़ रहे हैं, उसमें एक हथियार का काम आपके 90 वर्षों में जो इन्होंने किया है, और हमारा आपसे जुड़ाव तकरीबन 40-45 वर्षों से है, वो काबिले तारीफ है और जन जन तक पहुंचा है। और जो उनके प्रश्न आए हैं उससे लगता है कि बात को उनके हृदय को स्पर्श किया है, और हृदय को स्पर्श किया है तो वो उस बात पे पूरा भी उतरेंगे, उतरे हैं और उतरते रहेंगे, और हम इस जंग में सफलता की ओर चाहे धीमे धीमे मगर आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है
0: जी। आप रेडियो भी सुनते हैं और रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं
3: जी,
0: तो इन अनुभवों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
3: मैं जब रेडियो सुनता हूं तो जितने भी रेडियो के समकक्ष चीजें हैं, मुझे ये लगता है कि रेडियो अपने आप में एक सही आत्मा है उसकी। मैं सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद आता है कि उसमें कई बातें ओरिजिनल और मौलिक आती हैं, जो केवल ज्ञान नहीं बढ़ाता, उसको गुणों में भी धारने की कोशिश करता हूं। और सॉन्ग्स जो बहुत प्यारे प्यारे पुराने आते हैं, उससे अपनी आत्मा को ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से मैं जोड़ता हूँ उस वक्त जब मैं सॉन्ग सुनता हूँ, गहराई में डूब के। और जहाँ तक जनता का सवाल है, ये जनता जब हमसे पूछती है कि आपका आज आया था, ये चीज़ हुई थी, ये तो आपने बताया, पर इसका आप क्या बताएंगे, इसका मायने ये है कि जनता के दिल में भी रुचि है, वो भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो और जानकारियाँ चाहते हैं। तो ये टेस्ट कंफर्म करता है कि जनता भी लाभान्वित सीधे तौर पर हो रही है। जो एंटरटेनमेंट मिलता है, जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो हमें और अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, पुराने पुराने लोगों की फिलॉसफीज, उनका दर्शन क्या था जीवन का, तो वो निश्चित तौर पे हमारे ज्ञान को नहीं बल्कि गुणों में परिवर्तित होता है।
0: बिल्कुल। आप नशा मुक्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, नशे से भी लोग दूर रहें, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं इसके लिए

0: पिछले 50 सालों से संदेश देता रहा हूँ और मुझे खुशी है कि नशे में हम कामयाबी हासिल कर सके, खासकर उनमें जो उन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया उनको आगाह करने में हमें कामयाबी मिली है। जो कर रहे हैं वो कितने छोड़ पाते हैं वो एक अलग बात है, उसमें हमें सफलता कम मिली है, मगर इसलिए हमें बहुत भारी सफलता मिली है।
1: रेडियो पर आपकी बहुत सी वार्ताएं प्रसारित हुई है, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका?
0: पहली बात तो खुद को प्रसन्नता मिलती है, खुद हम जो बात दिल में घूमती रहती है, चिंतन मंथन से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको हम अपने आप में समेटे रहते हैं, कोई बहुत मायने नहीं निकलते उसके। ठीक है, अच्छी बात है चिंतन मंथन, पर चिंतन मंथन करके जो निष्कर्ष है वो लोगों तक पहुंचे, खासकर हमारी नई पीढ़ी, नई पीढ़ी के लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। और हौसला भी मुझे है कि जब भी दुनिया बदलेगी तो नई पीढ़ी बदलाएगी, और नई पीढ़ी तक जब हम मैसेज पहुंचा है हमारा, और नई पीढ़ी वाले जो हमारे से फिर फर्दर प्रश्न करते हैं, आनंद आ जाता है और लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और कहीं हम पहुंचेंगे, और पहुंचे हैं भी, कई सीढ़ियां जो चढ़ चुके, मंजिल हमें नहीं मिली अभी। नशा मुक्त भारत नहीं हुआ होगा, इतनी जल्दी आसान काम भी नहीं है, मगर हम में सीढ़ियां चढ़ाने के लिए, सहारा देने के लिए आपकी जो आकाशवाणी है उसको मेरा सलाम
1: जी। गौरव में 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 8 जून को, तो इस अवसर पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: सबसे पहले तो मैं इजहार कर दूं कि हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 90 वर्ष तक एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन इतना कार्य कर रही है। लोगों के एंटरटेनमेंट करना भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोगों को सूचना देना, और ये बॉर्डर के अलावा जो समाज में जंग लड़ रहे हैं उस जंग में ये अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ सिपाही है हमारा आकाशवाणी, और इसलिए मैं बहुत गर्व के साथ इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सुविधाएं और भी इसी तरह से चलती रहें, बढ़ती रहें, ये मेरी शुभकामना भी है, ख्वाहिश भी है, और मेरी प्रक्रिया भी है
1: जी। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: श्रोताओं, अब हमारे साथ एक और रेडियो श्रोता हैं, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम?
2: मेरा आशुतोष कुमार प्रजापति।
1: क्या काम करते हैं आप?
2: मैं रेस्टोरेंट है नया प्रोग्राम।
1: आप रेडियो सुनते हैं? कब से सुनते आ रहे हैं?
2: ये मान लो सन 78 से मान लो।
1: तो कैसे रुचि बढ़ी आपकी रेडियो?
2: पहले बिना ये गीतमाला चलता था ना, फरमाइश और फरमाइश ही आती थे पहले, तो रेडियो बिस्तर पे रहता था।
1: ज्यादातर कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद?
2: जैसे बिना ये गीतमाला आता था, और भी आते हैं, फरमाइश भी आती है, और अमीन सहानी बहुत पुराना है वो रेडियो में, उसकी आवाज ही बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी आवाज थी उसकी ही, उसकी आवाज सुनने के लिए इंतजार करते ही थे उस टाइम पर।
1: तो उनके आवाजों को सुनकर क्या लगता था कि जैसे वो हमारे सामने बैठकर ही बात कर रहे हो?
2: ऐसा लगता था उस टाइम पे। तो ये होता था ना कि जैसे पष्ट पायदान पे कौन सा जाना होता है।
1: और अभी भी सुनते हैं?
2: अभी भी सुनता हूँ।
1: कहाँ पे सुनते हैं ज्यादा?
2: दुकान पे, रेस्टोरेंट पे।
1: हाँ, तो वहाँ और भी लोग मिलते होंगे, वो भी सुनते होंगे।
2: हाँ, अभी पुराने जो आए हैं वो तो रुचि लेते ही है रेडियो पर, बहुत से आते हैं पूछते हैं कि आज कहाँ मिलता है रेडियो। मैं ये बड़ी मुश्किल से मिलता है अब तो, पहले तो मिल जाते थे, सब्जी मंडी में ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से मिला मुझे रेडियो
1: जी। रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो आप श्रोता हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं, तो इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: नहीं, रेडियो तो बहुत ही अच्छी चीज है, सुकून भी मिलता है और दिमाग भी संतुलन में रहता है।
1: आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपके
1: भी। श्रोताओं, हमारा देश युवाओं का देश है और युवा शक्ति भी हमारे साथ है। आइए जानते हैं युवा शक्ति के विचार कि रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और युवा किस तरह से रेडियो को अपने जीवन में शामिल करते हैं और इससे सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ एक युवा साथी। नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम सलोनी सुमन है।
1: आप क्या करते हैं अभी?
3: मैं अभी बीटेक कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से, अभी मेरा सेकेंड ईयर है।
1: आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में क्या आप रेडियो भी सुनते हैं?
3: मैं आज भी नियमित रूप से रेडियो सुनती हूँ। मैं विशेष रूप से समाचार, युवा कार्यक्रम, प्रेरक वार्ताएं, संगीत और

0: समसामयिक विषय पर आधारित चर्चाएं सुनना पसंद करती हूं।
1: जी, रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता क्या लगती है आपको?
0: रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता कि इसे सुनते समय अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ाई भी करती हूँ तो मैं साथ में रेडियो सुनती रहती हूँ। रेडियो से मेरी पढ़ाई में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होती है, मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर पाती हूँ। जैसे कि यात्रा के दौरान या पढ़ाई करते समय दैनिक कार्यों के बीच भी रेडियो हमारा अच्छा साथी बना रहता है। इसके अलावा रेडियो की भाषा सरल और सहज होती है, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति आसानी से जुड़ पाता है। मेरे विचार से रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विश्वसनीयता, सरलता और व्यापक पहुंच है। जहां इंटरनेट या अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, वहां भी रेडियो लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करता है।
1: जी, रेडियो और श्रोताओं के बीच में किस तरह के संबंध स्थापित होते हैं?
0: रेडियो श्रोताओं के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करता है, क्योंकि इसमें आवाज के माध्यम से भावनाएं और संदेश सीधे लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है।
1: आप किस प्रकार के रेडियो कार्यक्रम ज्यादा सुनना पसंद करते हैं?
0: मुझे ऐसे रेडियो कार्यक्रम सुनना पसंद है जो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी हो।
1: जैसे कि
0: समाचार बुलेटिन, करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम, युवा मंच, विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े कार्यक्रम। इसके अलावा संगीत कार्यक्रम भी मुझे आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे तनाव कम करने और मन को प्रसन्न रखने में मदद करते हैं।
1: अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि रेडियो ने आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित और प्रेरित किया है।
0: इसके माध्यम से मुझे देश दुनिया की घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती रही है। समाचार और चर्चाएं सुनने से मेरा सामान्य ज्ञान काफी बड़ा है।
1: आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: श्रोताओं, एक और युवा बालिका हमारे साथ है, आइए जानते हैं इनसे भी इनके विचार। आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम सुहानी है।
1: क्या करते हैं आप?
2: मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ लैब टेक्नीशियन में।
1: आप रेडियो सुनती हैं?
2: हाँ अक्सर।
1: आजकल लड़कियाँ पढ़ाई, करियर और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। इस भाग दौड़ के बीच आप रेडियो कब सुनती हैं और रेडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है?
2: मैं ज्यादातर रात को पढ़ते समय रेडियो सुनती हूँ या फिर शाम को अपनी हॉबीज को पूरे करते समय रेडियो सुनती हूँ, और मुझे है ना रिलैक्स फील होता है रेडियो सुनते समय। रेडियो मेरे लिए एक सुरक्षित और सुकून भरे स्पेस जैसा है, जहाँ कोई भी विजुअल स्क्रीन नहीं होती और बस एक है ना शांत और सकारात्मक आवाज होती है।
1: आकाशवाणी कोटा से प्रसारित कौन से कार्यक्रम आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं?
2: महिलाओं की कहानियाँ और करियर गाइडेंस और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा रेडियो पर जब हमारे लोकगीत और संस्कृति को आधुनिक तरीके से पेश किया जाता है तो अपनी जड़ों से जुड़कर बहुत गर्व महसूस होता है। मोबाइल फोन्स और मतलब सोशल मीडिया पर बहुत सारा लोगों से आँखों को थकान होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज़ है जब इसको कहीं भी चालू कर दो और अपना काम करते और रेडियो आराम से सुन सकते हैं। जैसे मैं पढ़ती रहूं या मम्मी के साथ कुछ काम करा रही हूं और रेडियो चला दो तो उसको आसानी से सुना जा सकता है। इसमें फोन की तरह बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, बस कान में अच्छी आवाज पड़ती है और जिससे मन शांत होता है और काम में भी मन लगा रहता है।
1: रेडियो पर आपको क्या सुनना ज्यादा पसंद है?
2: रेडियो पर मुझे प्रेरणादायक नाटक जो आते हैं वो सुनना बहुत पसंद है, और उस पर पुराने गाने आते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं रेडियो पर किसी ऐसी लड़की की कहानी सुनती हूँ जिसमें वो मुश्किलों से लड़कर पढ़ाई की और बड़ी नौकरी पाने की इच्छा रखती है तो मुझे बहुत आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। इसके अलावा एग्जाम के दिनों में पढ़ाई की टिप्स और करियर को लेकर बहुत अच्छी बातें रेडियो में बताई जाती है।
1: रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: मेरे लिए रेडियो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है बल्कि एक सच्ची सहेली की तरह है। रेडियो एक ऐसी चीज है जो बोर नहीं करती और लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ है ना नया ही सिखाती है। जब मैं कभी उदास होती हूँ या पढ़ाई में प्रेशर फील करती हूँ तो रेडियो की सकारात्मक बातें और अच्छे गाने मेरा मूड फ्रेश कर देते हैं। रेडियो के 90 साल पूरे होने पर मैं यही कहूँगी कि दुनिया भले ही कितनी ही आगे बढ़ जाए, कितनी ही बदल जाए या कितना ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए, लेकिन रेडियो एक ऐसी प्यारी और अपनी सी आवाज़ की जगह है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब रेडियो के अनाउंसर हमसे सीधे सीधे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना हो जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हो और हमारे पास बैठकर ही बात कर रहा हो। वे हमारे मूड को समझते हैं और अच्छे गाने सुनाते हैं और सकारात्मक बातें करते हैं। यहाँ कोई जज करने वाला नहीं होता, न ही लाइक्स या कमेंट्स की कोई रेस हो रही होती है। रेडियो पर जब दूसरे श्रोताओं के पत्र या उनके संदेश पढ़े जाते हैं

0: हैं तो लगता है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए मेरे लिए रेडियो सिर्फ एक मनोरंजन का सहारा नहीं बल्कि मेरे लिए एक सच्ची सहेली है जो हर सुख दुख में बिना किसी शर्त के मेरे साथ खड़ी होती है।
1: जब आप लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल लगाती हैं और आपकी कॉल लग जाती है तो उस समय कैसा महसूस होता है?
0: सच बताऊं तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है जब फोन पर उधर से आवाज आती है कि हाँ जी अपनी बात कहिए। ऐसा लगता है कि जैसे हम भी इस बड़े रेडियो परिवार का एक खास हिस्सा बन गए हों।
1: लाइव फोन इन प्रोग्राम की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको रेडियो से सीधा जोड़ देती है?
0: इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि तुरंत और सीधे जवाब मिलना, चाहे खेती किसानी की बात हो, सेहत की हो, या कोई भी फरमाइशी गाना हो या लाइव प्रोग्राम हो जो सीधा जुड़ा होता है उसकी बात ही अलग होती है।
1: लाइव प्रोग्राम में जब एक्सपर्ट आते हैं तो उनसे सीधे सवाल पूछकर आपको कितनी मदद मिलती है?
0: घर बैठे बैठे हमें इतने बड़े विशेषज्ञों की सलाह मुफ्त में मिल जाती है। जैसे जब चौपाल या किसी लाइव शो में खेती और बागवानी के डॉक्टर्स आते हैं तो हम अपने फसल और मिट्टी की समस्या तुरंत बताकर उपाय जान लेते हैं।
1: लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ आपकी कोई ऐसी खास याद जुड़ी हुई हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
0: हाँ, मुझे याद है जब पहली बार मेरा कॉल लगा था तो मैंने पूरे मोहल्ले को बता दिया था कि आज रेडियो पर मेरी आवाज आई।
1: आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
2: श्रोताओं, 8 जून 2026 को भारत में संगठित रेडियो प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर प्रस्तुत ये रेडियो रिपोर्ट अब यहीं संपन्न होती है। इस रेडियो रिपोर्ट का संयोजन तेजराम मीणा का रहा, प्रस्तुति हिमांशु नामा की और प्रस्तुति सहयोग रहा शशिकांत सुमन का।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर पर रेडियो रिपोर्ट। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसे

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला नगमा हम सुनेंगे शान और सुनिधि चौहान की आवाज में तारा रंपम फिल्म से, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। आइए सुनते हैं अगला नगमा, एक मैं और एक तू फिल्म का, जिसे गाया है बैनी दयाल, अनुष्का मनचंदा ने और अपने शब्दों से पिरोया है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

खूबसूरत से मौसम में, खूबसूरत से नगमे आप तक पहुंच रहे हैं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं अगले नगमे की ओर चलते हैं। अगला नगमा हम सुनेंगे दम लगा के हईशा मूवी से, मोनाली ठाकुर की मधुर आवाज में, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने, शब्द दिए हैं वरुण ग्रोवर ने और इसमें संगीत है अनु मलिक का। आइए साथ में मिलकर सुनते हैं।

धड़कन फिल्म का नगमा भी आपने सुना अलका याग्निक उदित नारायण कुमार सानू की आवाज में। शब्द समीर के थे और संगीत था नदीम श्रवण का। आइए अगले गीत की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला गीत आप सुनेंगे धनक फिल्म का मोनाली ठाकुर की आवाज में, जिसे लिखा है मीर अली हुसैन ने और संगीत दिया है तपस रेलिया ने।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

फिल्म कलयुग का नगमा आपने अभी सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में। आइए अब अगले नगमे की तरफ बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको यस बॉस फिल्म का ये नगमा अभिजीत अलका याग्निक की आवाज में, शब्द जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का।

युवराज फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक जावेद अली की आवाज में। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

0: भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व

0: की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6

0: 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1041-011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं बदलते साथी फिल्म संगीत, जिसमें आज हम सुनेंगे कुमार सानू और साथियों की आवाज, और अगले कुछ समय तक हम साथ मिलकर सदाबहार नगमे सुनेंगे जिन्होंने कभी दिलों की धड़कनों को सुर दिया तो कभी यादों को आवाज दी और कभी मुस्कुराने की वजह भी बन गए। कुमार सानू और उनके साथी गायकों की मधुर आवाजों से सजी हुई इस महफिल का आइए आगाज करते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला नगमा। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में आइए सुनते हैं कच्चे धागे फिल्म का ये नगमा।

श्रोताओं, बदलते साथी फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है। श्रोताओं, ऐसा होता है ना, कुछ नगमे दिल के बड़े करीब होते हैं और जब भी वो रेडियो पर चलते हैं तो मन में पूरा दौर छा जाता है जब हम उस गाने को गाते ही रहते थे। और अभी जैसे आपको पता है, हम कुमार सानू की आवाज़ में गाने सुन रहे हैं और उनकी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा ही है। उनकी गायकी में एक सादगी, एक अपनापन, और ऐसा अपनापन जो कि सीधे दिलों तक पहुंचता है। आप भी कुछ ना कुछ नगमे गुनगुना रहे होंगे कुमार सानू

ओके तो चलिए एक और नगमा, एक ऐसा गीत जिसके बोल और धुन दोनों ही आपके दिलों पर अलग ही छाप छोड़ देंगे और छोड़ते भी होंगे, तो सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, आपको पता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हमें नहीं पता कि अगला खूबसूरत पल कब हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ मुलाकातें तय नहीं होती, लेकिन वही मुलाकातें जिंदगी की सबसे प्यारी याद बन जाती है। और इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है एक और खूबसूरत सा नगमा। तो चलिए, एक छोटा सा नगमा, प्यारा सा नगमा आपके सामने। कुछ ख्वाब आंखों में चुपचाप पलते हैं, कुछ लोग दुआओं में हर रोज मिलते हैं, फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब सपने हकीकत की शक्ल में मिलते हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में यस बॉस फिल्म का एक खूबसूरत सा नगमा।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, बातों बातों में फिल्म संगीत का आप आनंद ले रहे हैं, तो चलिए अब अगले नगमे की तरफ चलते हैं, जो कि आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में, आशिकी फिल्म का।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप बातों ही बातों में, जिसमें आज हम सुन रहे हैं कुमार सानू और साथियों की आवाज। और दोस्तों, 90 के दशक के कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही ना चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जितने भी नगमे आपने अभी सुने उनमें से कई सारे नगमे आपके फेवरेट होंगे। कुमार सानू के जो नगमे हैं उसमें कहीं शरारत होती है, मस्ती होता है और प्यार का खूबसूरत संगम भी होता है। और अगला गीत जो है वो आप सभी के सामने लाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिल की चोरी की खबर तो यहाँ लिखवाई जाती है, और यहाँ पे नजरें मिली तो बात बढ़ गई, बात बढ़ी तो दिल की राह खुल गई, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं और दिल की चोरी कब हो गई पता ही नहीं चला। खूबसूरत सा नगमा चुरा के दिल मेरा, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का, रानी मलिक के शब्द और संगीत अनु मलिक के।

दिल का अपना ही मिजाज होता है, कभी समझदार तो कभी बिल्कुल पागल होता है, और जब बात प्यार की हो तो फिर इसकी सुनता कौन है। आइए अगला नगमा, मेरा दिल भी कितना पागल है, अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज, शब्द समीर के, और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत बातों बातों में का आनंद ले रहे हैं आप। सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं कुमार सानू और साथियों की आवाज। और कुछ मुलाकातें तय नहीं होती, लेकिन उम्र भर याद रह जाती है। राहों में अचानक कोई अपना मिल जाए तो सफर भी खूबसूरत लगने लगता है। आइए अब अगला गाना सुनते हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई, एक खूबसूरत सा नगमा आप सभी के सामने कुमार सानू की आवाज़ में।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत बदलते साथी, जिसमें आज हमने सुना कुमार सानू और साथियों को। FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में अब आप विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने, इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली, है बस इसी का इंतजार।

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी

जब से लगाया है दिल इस दिल का तो बुरा हाल है, छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप थोड़ी देर में दिल्ली से हिंदी व अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति

0: बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian.

0: and all, you know, and waterborne diseases, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें, तो
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहां पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
0: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े. शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी. सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है. शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट. आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम तरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए. इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं. अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है. इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जैसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है. और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में. बहुत सारे इलाकों में अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए. इंजन ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है।

0: that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing, because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the mudra loan, as we can see, is of three stages: the Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission, or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them, because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubh, Diti, self-employment ki baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना, जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को

0: पति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
1: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की, और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस वजह से ये 6000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
0: करना है। राइट। थैंक यू सो वेरी मच शुभमाया आदित्य, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
1: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst and

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:45 हो रहे हैं। अब हमारी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।